FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आस्था के स्वर।
3: आस्था के स्वर कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए समूह स्वर में ये देशगान। रचना है राधा कृष्ण बावनिया की।

अभी आपने सुना समूह स्वर में ये देश गान, रचना थी राधा कृष्ण बावनिया की, संगीत था संतोष अग्निहोत्री का। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए घनश्याम वासवानी की आवाज में ये भजन, रचना है संत सूरदास की।

अभी आपने सुना घनश्याम वासवानी की आवाज में ये भजन। आस्था के सुर कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में ये भजन। रचना है पंडित किरण मिश्रा की।

अभी आपने सुना मृदुल कृष्ण शास्त्री की आवाज में ये भजन। आस्था के स्वर कार्यक्रम की आज की अंतिम पेशकश में सुनिए गोपाल शर्मा और सुखदेव शर्मा की आवाज में ये भजन। रचना है पंडित रामानंद शर्मा की।

0: है।
1: अभी आपने सुना गोपाल शर्मा और सुखदेव शर्मा की आवाज में ये भजन, और लीजिए अब सुनिए संत मीराबाई की रचना को, स्वर है चित्रा सिंह का।

अभी आपने सुना चित्रा सिंह की आवाज में ये भजन। आस्था के स्वर कार्यक्रम की आज की अंतिम प्रस्तुति में सुनिए उदित नारायण की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: इसी भक्ति रचना के साथ आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रोग्राम आस्था के स्वर, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन।
3: देखिए, दिनचर्या का विषय कुछ ऐसा है कि जैसे नेचर की साइकिल होती है, वैसे हमारा शरीर भी नेचर से बना हुआ है, प्रकृति से बना है, तो उसकी भी अपनी साइकिल होती है। उस साइकिल के अनुसार सबसे पहली बात तो दिनचर्या में है कि वो है सुबह कितने बजे उठना चाहिए। तो ये 5 से 7 का हमारा समय होता है जो हमारा थोड़ा कहा जाए तो मल त्यागने का समय है
0: जी।
3: तो ये अगर हम लोग इस समय उठ जाते हैं तो ये आपका कफ का समय मुख्य रूप से होता है। तो उस समय अगर हम उठेंगे तो हमारा पेट अच्छे से साफ होगा, और नहीं उठेंगे तो फिर यही मल शरीर के अंदर रहेगा और रोग का कारण बन जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि हम लोगों ने हम सुनते भी आ रहे हैं सदा से, हमारे शास्त्रों में भी इस बारे में चर्चा की गई है, सुबह को उठें, और सुबह को उठें तो सूर्योदय से वैसे तो 2 घंटे पहले उठना चाहिए, 5 बजे भी उठें एटलीस्ट, इतना तो हम मेंटेन करें। और फिर उसके बाद हम लोग तुरंत उठने के बाद अपने इस जीवन शैली में एक अपनी आदत बनाएं कि हम लोगों को 2 से 3 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए, और ये भी फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए। हालांकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हम पिएं, और बहुत ज़्यादा अगर आवश्यकता लगे तो मटके का पानी पिएं। वैसे अच्छा है कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिया जाए। फिर ये जीवन शैली में ये जो हम लोगों ने पहले पानी पीने का कार्य किया, हमारा शोधन का कार्य शुरू हो जाता है सुबह उठते ही, तो शरीर शोधन के साथ फिर हम लोगों को अपने एक एक अवयव के शोधन की आवश्यकता है। इसलिए नियमित रूप से योग और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। उसमें योग का ही भाग है प्राणायाम, आसन, इस तरह के जो अभ्यास हैं। तो ये एक ऐसी जीवन शैली है कि हम लोगों के शरीर के अंदर जो भी मल जिस भी रूप में बनता है, क्योंकि पाचन के अलावा भी जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जनरेट होती है सेल्स के अंदर, तो सेल्स भी कुछ मल जनरेट करते हैं, उसका निष्कासन आवश्यक है। जब प्राणायाम किया जाता है तो फिर वो मल का शोधन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। यही हमारे जीवन की प्रक्रिया है, शुरुआत इसी से होती है। और फिर उसके बाद जब हम ये 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए निकाल करके प्राणायाम ध्यान आदि कर लेते हैं, शरीर का शोधन भी हो जाता है और मन में विचारों का शोधन भी हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम आपको ध्यान के लिए तैयार करता है, तो ध्यान भी करना चाहिए। फिर उसके बाद अपने जीवन को इस रूप में शुरुआत करना चाहिए। जैसे नाश्ते की बात की जाए तो 8 से 9 बजे के बीच में हमारा नाश्ता होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा भारी नाश्ता नहीं लेना चाहिए। 8 से 9 के इस बीच के समय में हम लोग अंकुरित का सेवन करें, फलों का सेवन करें। इस समय हम दूध भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं और जूस भी ले सकते हैं, परंतु सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते हैं, ये भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ में हम जो सुबह उठ करके जो आजकल हम लोगों का पराठे खाने का प्रचलन चला है, देखिए पहले तो ऐसा होता था कि कोई घर में हम लोगों का कोई विशेष अतिथि आता था तो हम लोग इंतज़ार करते थे अतिथि आएंगे तो पूड़ियाँ बनेंगी, पराठे बनेंगे, लेकिन आजकल हम लोगों ने उसे विशेष अवसर को छोड़ करके नियमित करना शुरू कर दिया। ये भी हम लोगों के लिए रोग का कारण बन जाता है, क्योंकि शरीर का सामर्थ्य है हम उसका अतिशयोक्ति में प्रयोग करेंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है।
0: फिर महीने में कितनी बार खा सकते हैं पराठे पूड़ी
3: और इस तरह के जो हल्के हल्के पदार्थ हैं सुबह में, हम लोगों को दलिया ले लिया, हम लोगों ने नमकीन भी ले

0: सकते हैं, मीठा भी ले सकते हैं, इस तरह के पदार्थ हम लोगों को सेवन करने चाहिए। दूसरा फिर जब भोजन का समय आता है तो 4 घंटे का अंतराल तो देखिए भोजन में रखना चाहिए ताकि हमारे पाचन तंत्र को पूरा समय मिले। तो भोजन के समय भी आजकल तो ये चला है ना कि राजा की तरह भोजन करना चाहिए, देखिए अपने पेट के अनुसार भोजन करना चाहिए। अब राजा कितना खाता है किसी को पता नहीं है, तो इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाता है कि आपको पेट के 1/2 भाग के हिसाब से, आधे भाग के हिसाब से इस तरह सोचना चाहिए, आधा भाग आपका पेट भोजन से भरे, उसमें फिर 1/4 भाग पानी और वायु के लिए हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, और फिर उसके बाद रात्रि का भोजन जितना हल्का हो, एक पर्टिकुलर 50-60 की आयु के बाद तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए रात्रि को हम लोग भोजन ना ही लें तो अच्छा है, वरना खिचड़ी आदि दलिया ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो तुरंत पचने वाला हो। रात्रि को सोते समय दूध लेने का प्रयास कर लेना चाहिए, अच्छा अभ्यास है, 200 से 250 ml ले सकते हैं आराम से। थोड़ा किसी को गैस अधिक बनती हो तो थोड़ा कम लें, और कफ अगर किसी को हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके ले लें। रात्रि का भोजन 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, सबसे अच्छा टाइम तो ये है। और भोजन करने के बाद हम लोगों को शाम को थोड़ा टहलना चाहिए, और भोजन जैसे हम लोगों ने 8 बजे कर लिया तो आराम से मैक्सिमम हमें 10 बजे तक तो सो जाना चाहिए। वैसे 9-9:30 बजे सोने का अच्छा अभ्यास है, आराम से 4-5 बजे आप उठ सकते हैं उसके बाद।
1: हमारी दिनचर्या कैसी हो, चिंतन में अभी आप सुन रहे थे साध्वी देवादिति के विचार। FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। गायक स्वर था महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह का। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
1: भाई बंडोनी राम राम। हमारी आज की कृषि चर्चा को विषय छे कोदो मिलेट की खेती। कोदो बेहद कठोर सूखो प्रतिरोधी न पथरीली न सबसे कमजोर मिट्टी पर बढ़ने वाली फसल का रूप में जानी जाए। एक कम वर्षा की आवश्यकता होए ई फसल 100 से 140 दिन में पकी घने तैयार हो जाए। कोदो एक गुच्छेदार घास छे जी की 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ न एक दाना कठोर भूसी सी घिरा हुआ रहे जेख हटानो कठिन होए। दाना हल्का लाल सी गहरा घूसर रंग का होए। कोदो मिलेट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा रेशा न खनिज की अच्छी मात्रा होए। एक अनाज ख मधुमेह से पीड़ित रोगी नकलेण चावल का विकल्प का रूप में अनुशंसित की ओर गए। बात करा एक ही उन्नत किस्म न की तो कोदो की उन्नत किस्म न छे RK 65-18 JK 439 JK 13 JK 65 JK 48 JK 137 DSP 91 JK 98 JK 106 RBK 155 JK 65 RK 390। बात कराए कि मृदा न जलवायु की तो कोदो ख कम उपजाऊ मिट्टी सी दोमट मृदा में उगायो जाज। उपज का लेना कार्बनिक पदार्थ सी भरपूर उपजाऊ गहरी दोमट मृदा बेहतर परिणाम देज। कोदो सूखी सहिष्णु फसल छे जेख 500 से 600 मिलीमीटर वर्षा का साथ शुष्क न गर्म जलवायु में भी उगायो जाई सकज। बात करा बुआई का समय की तो खरीफ मध्य जून सी जुलाई का अंतिम सप्ताह तक मानसून की शुरुआत का साथ बुआई करनु फायदेमंद रहे। बात कराए की दूरी की तो कतार सी कतार 22.5 सेंटीमीटर न पौधा 10 सेंटीमीटर न गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर तक होनो चाहिए। कतार में बुआई का लेना 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर न बुआई 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करा। बात करा खाद न उर्वरक की तो बुआई का लगभग 1 माह पूर्व 5 से 7 टन FYM प्रति हेक्टेयर उपयोग करा न अच्छी फसल प्राप्त करना का लेना 40 किलोग्राम नाइट्रोजन न 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर उपयोग करा। बुआई का समय फास्फोरस की पूरी मात्रा न नाइट्रोजन की आधी मात्रा उपयोग करा न बुआई का 35 से 40 दिन बाद शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा को उपयोग करा। कतार में बोई गई फसल में दुई अंतः सस्य क्रिया न एक हाथ से निंदाई करनो उचित मान्यो गयो। सुनिश्चित वर्षा वाला क्षेत्र में आइसोप्रोटुरोन का 0.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर कमान सी बुआई का पश्चात अंकुरण का पूर्व छिड़काव करीना खरपतवार नियंत्रण का लेना प्रभावी मान्यो गयो। बात करा सिंचाई की तो कोदो की फसल का न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होए। पहली सिंचाई बुआई का 25 से 30 दिन बाद न दूसरी सिंचाई बुआई का 40 से 45 दिन का बाद दी जाए। यदि शुष्क अंतराल लंबी अवधि तक रहे तो मृदा का प्रकार न सूखा की गंभीरता का आधार पर हर 4 से 7 दिन का अंतराल पर सिंचाई की

0: आवश्यकता रहे। दलहन में अरहर मूंग उड़द न सोयाबीन का साथ 2:1 का अनुपात में एक ही अंतर्वर्ती खेती लाभदायक रहे। न सोयाबीन न रामतिल फसल का साथ एको फसल चक्र टिकाऊ पायो गयो। बात करा एमा रोग की तो एमा रस्ट रोग में पत्ती नप भूरा रंग का धब्बा दिखाई देने लगा जी प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करज। एक ही उपज में भी जेका सी उपज में काफी नुकसान हो। एका प्रबंधन का लेना मेनको जेब 75 WP के 0.2% घोल का साथ छिड़काव करा। खेत तैयार करते समय मृदा में 10 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास 10 g प्रति हेक्टेयर उपयोग करा। न बुआई का पूर्व 20 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3 g दानेदार प्रति हेक्टेयर की दर सी कुंडा में या छिड़क कर प्रयोग करा। बात करा कटाई की तो आम तौर पर फसल की बुआई खा 100 से 120 दिन का बाद कटाई कलेंट तैयार हुई जाज। आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज। राम राम।
1: कृषि चर्चा में आज का विषय था कोदो मिलेट्स की खेती। वाचक स्वर था माधुरी सेन का। बड़े

0: कुंडा में या छिड़क कर प्रयोग करा। बात करा कटाई की, तो आम तौर पर फसल की बुआई खर 100 से 120 दिन का बाद कटाई कलेंड तैयार हुई जाज। आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज, राम राम।
1: कृषि चर्चा में आज का विषय था कोदो मिलेट्स की खेती। वाचक स्वर था माधुरी सेन का।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या
2: ये धरती, ये नदिया, ये रैना।
4: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: जय श्रोताओं, सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सामुदायिक केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस। वार्ताकार होंगे एम जुबेर खान। 7:20 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म एक दूजे के लिए। 8:15 पर सुनिएगा निमाड़ी लोकगीत। 8:30 पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम होगा आपके मीत ये गीत। 9 बजे से 10 बजे तक हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

10 बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर नारी जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे परिसंवाद योग का जीवन में महत्व। प्रतिभागी होंगे क्षमा खेड़े, राधा एतालकर और संध्या पुराणिक। परिसंवाद का संचालन करेंगी मोना दफ्तरी।

0: 10:40 पर हम प्रसारित करेंगे सुगम संगीत। दिन में 11 बजे से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि आज सुबह 7:20 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज की फिल्म है एक दूजे के लिए। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

आज के हमारे सांध्यकालीन कार्यक्रमों में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT। शाम 6:00 युवाणी कार्यक्रम होगा। 6:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सात बजकर 21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनिएगा। रात्रि 8:00 से रात्रि 11:00 तक हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

0: ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।
1: ताजा खबर में प्रस्तुत है आज के समाचार पत्रों से ली गई कुछ प्रमुख सुर्खियां। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में अति प्राचीन श्री ममलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित श्री वृद्ध कालेश्वर महादेव मंदिर जो पिछले 40 वर्षों से बंद था, उसे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा पुरातत्व विभाग से बातचीत के बाद मंदिर के पट खुलवाकर मंगलवार को विधिवत अभिजीत मुहूर्त में पूजन अर्चन के साथ भक्तों के लिए दर्शन शुरू कराए गए हैं। एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आगामी 31 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर दी गई लिंक या सीधे anudan.dsvwmp.gov.in तथा प्ले स्टोर से अनुदान ऐप डाउनलोड कर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो के तहत खंडवा जिले में पल्स पोलियो की दवाई जन्म से 5 वर्षों तक के सभी बच्चों को पिलाई जाएगी। छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून 2026 को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। पालकों से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो बूथ पर पोलियो की दवाई अवश्य पिलाएं। पिछले 24 घंटों में जिले में 14.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में खंडवा तहसील में 15 मिलीमीटर, नया हरसूद तहसील में 6, पंदाना तहसील में 32, पुनासा तहसील में 15 और खालवा तहसील में 4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी सरस्वती का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खंडवा में आगमन हुआ। उन्होंने पैक्स संस्थाओं से जुड़ने वाले नए सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए और 10 वर्षों से लगातार नियमित ऋण अदायगी करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया। अब खेल समाचार। नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुधवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में शुरू होगी। ये इवेंट जापान में एशियन गेम्स के लिए एकमात्र चयन ट्रायल है। मुरली श्रीशंकर, अनिमेश कुजूर और तजिंदर सिंह तूर जैसे दिग्गज इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में एशियन गेम्स का टिकट पक्का करने उतरेंगे। एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में आयोजित होंगे। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। ये भारत की पाक पर पिछले 10 सालों में खेले गए 18 मैचों में 16वीं जीत है। अब एक नजर तापमान पर। कल का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आप सुन रहे थे ताजा खबर। समाचार संकलन किया शशांक

0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
0: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस, वार्ताकार हैं एम जुबेर खान।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को एम जुबेर खान का सादर नमस्कार। साथियों, आज विशेष वार्ता के इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस के अवसर पर मैं आपके मध्य चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में कूटनीति का हमेशा से केंद्रीय स्थान रहा है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व हमेशा रहा है और इस क्षेत्र को पुरुषों का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने अपनी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता से इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। महिला राजनयिकों ने इसी असाधारण योगदान को विशेष बनाया है और उनके इस असाधारण योगदान को सम्मानित करने और वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 24 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है, बल्कि कूटनीति के गलियारों में लैंगिक असमानता को समाप्त करने का एक वैश्विक संकल्प भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 76वें सत्र के दौरान 20 जून 2022 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत हर साल 24 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस प्रस्ताव को लाने का मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय एजेंडे को आकार देने और लागू करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान देना था। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार इतिहास में लंबे समय तक महिलाओं को शांति वार्ताओं और कूटनीतिक मिशनों से दूर रखा गया। 1992 से 2019 के बीच दुनिया भर में शांति समझौतों में महिलाएं केवल 13% वार्ताकार, 6% मध्यस्थ और 6% हस्ताक्षरकर्ता थी। इस असंतुलन को दूर करने और सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को हासिल करने के लिए इस विशेष दिन की स्थापना की गई। जब महिलाएं कूटनीति की कमान संभालती हैं तो बातचीत की मेज पर एक नया और अधिक समावेशी दृष्टिकोण आता है। महिला राजनयिकों की कार्यशैली में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बेहद प्रभावी साबित होते हैं। महिलाएं संघर्षों को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखती हैं। वे युद्ध या अशांति से प्रभावित आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। विभिन्न शोध बताते हैं कि जिन शांति वार्ताओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती है, वे समझौते अधिक समय तक टिकते हैं। महिलाएं समुदाय आधारित समाधानों और दीर्घकालिक पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। महिला राजनयिक पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों

0: साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, मानव तस्करी और सामाजिक न्याय जैसे सॉफ्ट पावर मुद्दों को भी वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उठाती हैं, जो एक स्थायी विश्व के लिए आवश्यक है। भारत का इतिहास ऐसी महान महिला राजनयिकों से भरा पड़ा है, जिन्होंने पुरुष प्रधान दौर में भी अपनी योग्यता का लोहा मनवाया और वैश्विक स्तर पर भारत का मस्तक ऊंचा किया। विजयलक्ष्मी पंडित वे भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की कूटनीति का एक बहुत बड़ा नाम है। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसके अलावा उन्होंने सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे शक्तिशाली देशों में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दी। हंसा मेहता, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के मूल मसौदे में लिखे वाक्य "सभी पुरुष समान पैदा हुए हैं" को बदलकर "सभी इंसान स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं" करवाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सी बी मुथम्मा, वे 1949 में भारतीय विदेश सेवा परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली महिला कैरियर राजनयिक बनी। उन्होंने विदेश सेवा में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभावपूर्ण नियमों जैसे शादी के लिए सरकार से अनुमति लेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल कर भविष्य की महिला राजनयिकों के लिए रास्ता साफ किया। अरुंधति घोष और चोकिला अय्यर, अरुंधति घोष ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि वार्ताओं में भारत का रुख बेहद मजबूती से रखा, वहीं चोकिला अय्यर भारत की पहली महिला विदेश सचिव बनी। वर्तमान दौर में भी रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जैसी अधिकारियों ने वैश्विक मंचों पर भारत की नीति का शानदार नेतृत्व किया। इतनी शानदार उपलब्धियों के बाद भी कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए रहा आसान नहीं रही। आज भी उन्हें कई अदृश्य बाधाओं यानी ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ता है। यद्यपि विदेश सेवाओं में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या बड़ी है, लेकिन दूतावासों के प्रमुख या विदेश मंत्रालयों के शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या आज भी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। कूटनीति में लगातार स्थानांतरण और विदेशी दौरों की आवश्यकता होती है। पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने कैरियर से ज़्यादा परिवार को प्राथमिकता दें, जिससे कई महिला अधिकारी उच्च पदों की जिम्मेदारी लेने से कतराती हैं। कई बार संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में महिलाओं की नियुक्ति यह सोचकर नहीं की जाती कि वे इन कठिन परिस्थितियों को नहीं संभाल पाएंगी, जो कि सरासर गलत है। भावी दिशा और कूटनीति का लोकतांत्रिकरण अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, एक सतत सुधार की मांग है। भविष्य की कूटनीति को अधिक समावेशी बनाने के लिए हमें सकारात्मक कदम उठाने आवश्यक हैं। समानता का अर्थ केवल संख्या नहीं बल्कि निर्णय लेने की शक्ति के समान अधिकार हैं। सरकारों को अपने विदेश मंत्रालयों में ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे महिलाओं को योग्यता के आधार पर शीर्ष नेतृत्व के अवसर मिलें। कार्यस्थलों पर ऐसी नीतियां, डे केयर सुविधाएं और जीवन साथी के रोजगार के लिए होनी चाहिए जिससे महिला राजनयिक बिना किसी पारिवारिक तनाव के देश का प्रतिनिधित्व कर सके। मेंटरशिप, वरिष्ठ महिला राजनयिकों को युवा महिला अधिकारियों का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे कूटनीति की बारीकियों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो सकें। आज का विश्व अत्यंत जटिल और अंतर संबंधित है, जहां सुरक्षा, पर्यावरण और मानवाधिकार जैसी चुनौतियां किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें समाज के आधे हिस्से यानी महिलाओं की बुद्धिमत्ता, कौशल और कूटनीतिक दूरदर्शिता की अत्यंत आवश्यकता है। 24 जून का यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब तक कूटनीति के मेज पर महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं मिलेगा, तब तक एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की कल्पना अधूरी है। यह दिन दुनिया भर की युवा लड़कियों को प्रेरित करता है कि वे भी बड़ी सोच रखें और वैश्विक मंच पर अपने देश की आवाज बनने का सपना देखें। कूटनीति में महिलाओं की इस प्रेरक यात्रा को और करीब से समझने के लिए हमें मंथन करने की आवश्यकता है। कूटनीति में महिलाएं शांति के लिए एक ताकत, यह संयुक्त राष्ट्र का एक संक्षिप्त अवधारणा है जो बताता है कि कैसे महिला राजनयिक वैश्विक स्तर पर शांति और मानवाधिकारों को बढ़ावा दे रही है। धन्यवाद।
1: विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था अंतर्राष्ट्रीय महिला राजनयिक दिवस। वार्ताकार थे एम जुबेर खान।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच टेलीफोन पर बातचीत, रास लफान हादसे पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अलनीनो के असर से निपटने के लिए सरकार कर रही अग्रिम तैयारियां, 315 जिले हो सकते हैं प्रभावित। और प्रदेश में 2-3 दिन में दाखिल होगा मॉनसून, आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के अमीर ने कल कतर के रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के समापन पर कल ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका अहम है और यह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर रहा है। 2 दिवसीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की मौजूदगी में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और साइबर जागरूकता बुकलेट का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देश भर में जन जागरूकता के लिए साइबर जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए खरीफ फसल के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब

0: 1740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के पास अचारपुरा में 5 दिवसीय शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजाति संस्कृति के संरक्षण के साथ जनजाति समाज के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। डॉ. यादव ने कहा कि कई पीढ़ियां प्रभावित करने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, नियंत्रण और उपचार की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है।
1: सिकल सेल एनीमिया की ऐसी असाध्य बीमारी जिसके कारण से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में जो संकल्प लिया कि सिकल सेल एनीमिया के न केवल स्क्रीनिंग कराएंगे लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को बीमार को पहचान करके उसकी दवाई, उसका इंतजाम और भावी इस प्रकार से जो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती है उसको बचाने का काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजाति परंपरा, कला और शिल्प के इस अनूठे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरा से आज का ये शिल्पकार महोत्सव अपने आप में शोभायमान हो रहा है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक में बताया कि सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को ऑनलाइन लिंक भेजकर सुझाव मांगे थे, जिनमें से 9 लाख लोगों ने अपनी राय दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 90% से अधिक लोगों ने UCC लागू करने का समर्थन किया है, जिनमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल हैं। UCC पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी 5 जुलाई तक ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2025-26 बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में कक्षा 5वीं का परिणाम 53.80%, कक्षा 5वीं का 57.70%, कक्षा 10वीं का 66.80% और कक्षा 12वीं का 77.80% रहा है। कक्षा 10वीं में शासकीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय गार्गी भोपाल की छात्रा रौनक ने 90.50% अंक के साथ प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 12वीं में इसी विद्यालय की छात्रा सुजाता मीना ने 89.80% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य वित्त आयोग आज भोपाल संभाग के दौरे पर रहेगा और नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव लेगा। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया सहित सदस्य VIP सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे से सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। शिवपुरी जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कल 8 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील कर दिया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर हुए निरीक्षण में कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, फायर NOC और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। कलेक्टर ने जिले के सभी SDM को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा और ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। ग्रुप बी में शामिल दोनों टीमों के अब तक 6-6 अंक हैं, हालांकि बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर है। दोनों टीमों ने अपने अपने सभी 3 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को

हराया, जबकि वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड और श्रीलंका से जीत दर्ज की। आपको समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा में पशुपालन और डेयरी विभाग की कार्यशाला में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ में जनजातीय कार्य विभाग और शिक्षा विभाग तथा जिला शिक्षा केंद्र के छात्रावासों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी छात्रावासों में शत प्रतिशत प्रवेश करने संबंधी निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने शहरी क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर लगभग 50 स्कूल वाहनों की जांच की। नर्मदापुरम में गौवंश को लेकर विकासखंड स्तरीय मैत्री गौ सेवक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। खंडवा में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर शहर में कोचिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की सघन जांच की जा रही है। कटनी में ढीमरखेड़ा विकासखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 के उन्मुखीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजगढ़ में जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं के 140 आवेदन का निराकरण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम।
1: कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रशांत मालवीय का नमस्कार। श्रोताओं, आज की फिल्म है सन 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए। फिल्म की कहानी वासु और सपना की है, जो कि एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, लेकिन उनके माता पिता इस प्यार का विरोध करते हैं, इन प्रेमियों को अलग करते हैं और उनके बीच मतभेद पैदा करते हैं।
2: संसार के प्रेम इतिहास में ये अध्याय एक बार नहीं, बार बार आता है। जवान प्यार सिर्फ एक ही भाषा जानता है, प्रेम की भाषा। बूढ़ी अकल वक्त की कब्र में गड़ी हुई सिर्फ दीवारें खड़ी करना जानती है। कभी भाषा की दीवारें, कभी साख की दीवारें, कभी दौलत की दीवारें, कभी नफरत की दीवारें। जब से इतिहास चला आ रहा है, तब से बुढ़ापे और जवानी का यह संग्राम भी चला आ रहा है। ना बुढ़ापे ने दम तोड़ा है अभी, ना जवानी ने हार मानी है।

इस फिल्म का निर्देशन के बालाचंद्र ने किया। मुख्य कलाकार हैं कमल हासन और रति अग्निहोत्री। फिल्म बहुत ही मधुर संगीत से सजी है। संगीतकार रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी।

0: श्रोताओं, ये फिल्म एक तमिल आदमी वासु बने कमल हासन और उत्तर भारतीय महिला सपना यानी रति अग्निहोत्री के बीच प्यार के बारे में है, जो गोवा में पड़ोसी हैं। वे पूरी तरह से अलग अलग संस्कृति से आते हैं और एक दूसरे की भाषा को भी समझ नहीं पाते हैं।
1: ओहो, अपड़िया।
2: जैसे सब समझ गया।
0: उनके माता पिता अक्सर आपस में झगड़ते रहते हैं।
3: देख नहीं रही है, मैं इधर जब कर रहा हूँ तो अंडे के गंदे छिलके फेंक रही है। पापी पापी महा पापी।
2: क्या
3: जिन्ने क्या बोलता?
2: क्या क्या है जी, किसे धमका रहे हो? ये तो वही मिसाल हुई, तुम आंखें बंद करके जब कर रहे थे, वो हवा से उड़कर आ गए, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारी खातिर हम अंडे छोड़कर तुम्हारी तरह घास खाना शुरू कर दे क्या?
3: हम भी घास नहीं खाते, घास खाती है तेरी अकल।
2: क्या?
0: गोवा में एक बुक स्टोर कीपर सुनील थापा है, जो सपना पर गंदी नियत रखता है और उसको किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। एक दिन जब वही बुक स्टोर कीपर सपना के पीछे पड़ता है तो सपना वासु के पास जाकर खुद को बचाती है।
4: वो जो मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसे जान छुड़ाने के लिए तुमसे पुरानी पहचान जता रही हूँ, तुम भी कुछ और ना समझ लेना।
5: हाँ, अपने गोवा के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, पैदा ही वॉलंटियर, लड़कियों की मदद करना अपना धर्म समझते हैं। एक आध दूसरी रकम का भी होता है, जैसे वो इंसान कम हैवान ज्यादा, जी जाता है पत्थर उठाकर भी उस पर। भाग गया आपसे डर गया शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। मुझे इस रास्ते से आना जाना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, ये शॉर्टकट है, वो रहा मेरा कॉलेज। अच्छा
6: हाँ।
5: लेकिन आप भाग क्यों रहे थे इस तरह? आप गूंगे हैं? ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है, आप बिल्कुल बोल आ, आ?
6: आ, हिंदी नहीं
5: फिर
6: तमिल, तमिलियन।
5: ओह, जो भी हो आप मेरे लिए फरिश्ते हो। फरिश्ते
6: मद्रास।
0: यही पहली मुलाकात वासु और सपना को हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे का बनाने वाली है। परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वासु और सपना एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, वो तो बने ही एक दूजे के लिए हैं।

0: वासु और सपना की प्रेम कहानी चुपके चुपके चलती रहती है।
1: यहाँ प्रेम ही नहीं केकड़े मिलेंगे, केकड़े।
2: केकड़े?
1: क्रैब, क्रैब।
2: ओह क्रैब। What happened, सपना?
1: केकड़ा मेरे अंग पे रेंग रहा है।
2: What?
1: क्रैब, क्रैब।
2: क्रैब नहीं, मेरा हाथ है। मेरा उंगली है।
0: लेकिन एक न एक दिन तो घर वालों को पता लगना ही था।
3: मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सपना, मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसी लड़की निकलोगी।
4: कैसी लड़की डैडी?
3: जैसे तुम निकली हो।
5: मुझे तो अब मालूम हुआ इतने इतने रात बाहर रहकर क्या गुल खिलाती है। ये तो पैदा हुई है हमारे माथे पे कलंक लगाने के लिए। कल से कॉलेज के बाद सीधे घर ना आई तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी? अब देख क्या रही है मेरी तरफ, दूर हो जा मेरी नजर से।
0: लेकिन फिर भी दोनों छुप छुप कर मिलते ही रहते हैं।
6: ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
7: तुम्हारा साथ, ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
6: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
7: हिंदी कविता है ना?
6: हाँ।
7: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
6: तुम और हिंदी कविता?
7: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: आखिर दोनों परिवारों की मीटिंग होती है।
1: हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम शादी करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अब आप जो चाहे कह सकते हैं।
2: आप लोग हमसे बड़े उम्र में, तजुर्बे में, फिर भी आप में से एक नहीं जो हमारे दिलों के अंदर झांक सके, हमें समझ सके।
1: ये इसलिए नहीं समझते कि हम इनकी इज्जत करते हैं, इन्हें बड़ा मानते हैं।
2: अगर वासु मुझे चोरी छिपे भगा ले जाता तो आप लोग क्या कर लेते?
1: हमने जो कुछ किया है मर्यादा के अंदर रह कर किया। अगर मर्यादा के बाहर चले जाते तो आप शर्म से मुंह ना खोल सकते, है ना?
3: भाई मुड़ा बदमाश, तू शुद्ध ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर एक मांस खाने वाले लड़की से शादी करना चाहते हो? शर्म नहीं आती?
2: मैं मांस मच्छी सब छोड़ दूंगी।
4: ओहो, इतना बड़ा त्याग?
1: ओके, ये त्याग नहीं है तो मैं मांस खाना शुरू कर दूंगा।
5: शिव शिवा,
1: फिर पेट भरेगा आपका।
4: सुन लिया आपने, ये सब इन तमिल वालों की चाल है। ये तो वही मिसाल हुई, हम भला अपने लड़के इस मद्रास से आए हुए लोफर को क्यों दे? क्या हमारे यहाँ लड़कों का काल पड़ गया है?
2: हमारा प्यार सच्चा है, ये साबित करने के लिए बोलिए, हम क्या करें, हम करने के लिए तैयार हैं।
6: देखो साहब, आप मुनासिब समझो तो मैं एक सलाह देता हूँ, एक साल के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दो, और फिर उसके बाद भी एक दूसरे के बनना चाहें तो मान जाएंगे कि इनका प्यार प्यार है, वासना नहीं है।
0: वासु और सपना की जीत को देखते हुए ये फैसला मान लिया जाता है और ये शर्तें रखी जाती है।
4: तो ये एक साल तक एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते।
6: ठीक है,
4: आपस में खत भी नहीं लिख सकते।
6: ठीक है, इन दोनों को एक ही शहर में भी नहीं रहना चाहिए। मैं इसको हैदराबाद भेज दूंगा।
0: स्टाम्प के ऊपर करार लिखा जाता है और दोनों एक साल के लिए जुदा हो जाते हैं।

0: वासु हैदराबाद चला जाता है, जहां पर उसे मिलती है संध्या याने माधवी। संध्या एक विधवा महिला है जो वासु को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाती है। दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है।
1: हम तुम दो जब मिल जाएंगे।
2: दोनों जब मिल जाएंगे हाँ, फिर
1: एक नया इतिहास रचाएंगे
2: बनाएंगे, ठीक रहेगा ना?
1: ठीक नहीं, ब्यूटीफुल, थैंक यू। बनाएंगे
2: हाँ,
1: और अगर हम नहीं मिल पाए तो
2: हम ना मिल पाए तो आगे
1: तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे।
2: वाह वाह, तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे।

उधर गोवा में सपना की माँ सपना के दिमाग से वासु का ख्याल निकालने के लिए गोवा में एक परिवार के मित्र के बेटे चक्रम यानी राकेश बेदी को लाती है, लेकिन वो सपना को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसी बीच सपना के कॉलेज की पिकनिक ट्रिप मैंगलोर जाती है, जहां पर सपना पर नजर रखने के लिए सपना की मम्मी चक्रम को भी साथ भेजती है। वासु भी अपने काम के सिलसिले में मैंगलोर पहुंचता है, जहां पर वासु सपना को चक्रम के साथ देख लेता है, जिससे वासु का मन बेचैन हो उठता है।

0: चैन होकर चक्रम के कमरे में जाता है।
1: सपना कहाँ है? वो जरा बाहर तशरीफ ले गई है। आप कौन है?
2: हम उनके पति हैं।
1: पति? तकरीबन।
2: What do you mean?
1: होने वाले पति। सोचा है घर बसाने से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए।
0: वासु गलतफहमी का शिकार हो जाता है।

0: परेशान होकर वासु संध्या को सब कुछ बताता है।
1: वासु, मैंने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा। तुम्हारी आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं।
2: सिर्फ आंखें नहीं संध्या, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी आत्मा जल रही है। मुझे ऐसी ठंडी छांव चाहिए जिसके नीचे मैं सारी यादें भूल जाऊं। सारी यादें, वो छांव तुम क्यों नहीं हो सकती।

0: जानने के लिए सपना से मिलने गोवा पहुंच जाती है।
1: ये सब किसने लिखा है?
2: मैंने, माँ का हुक्म था। मैं बासु का नाम भी जबान पे न लाऊं। उस हुक्म का ये जवाब है मेरा। हमारे प्यार के रास्ते में माँ ही सबसे बड़ा रोड़ा है।
1: हाँ, बासु मुझे बता चुका है।
2: ओह, बासु ने आपको सब कुछ बता दिया है?
1: वो न बताता तो मुझे कैसे मालूम होता? हम जब भी मिलते हैं सिर्फ आपकी बात होती है। बासु की माँ है?
2: नहीं, मेरी सास।
1: सपना, मैं आज की फ्लाइट से जा रही हूँ।
2: इतनी जल्दी?
1: जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो गया।
2: कौन सा काम?
1: सच बताऊँ?
2: जरूर।
1: मैं अपनी शादी के बारे में फैसला करने आई थी।
2: अच्छा, तो क्या फैसला किया आपने?
1: अरे, ये तो कॉफी है, मैंने चाय ऑर्डर की थी।
2: ओह, शायद मेरा कॉफी का प्याला आपके पास चला गया। थैंक यू।
1: थैंक गॉड, मैंने आपका प्याला छूटा नहीं किया।
0: संध्या हैदराबाद वापस पहुंचकर वासु को सपना की सच्चाई बताती है।
1: सपना, तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। वो ये एक मिनट भी तुम्हें नहीं भूली। वो बिचारी तो तुम्हारे इंतजार में एक एक दिन गिन रही है, एक एक क्षण गिन रही है। तुम इतना ही बता दो, तुम्हारा एग्रीमेंट कब खत्म होता है? तुम्हारी दोबारा मिलने की तारीख कौन सी है? बोलो।
0: आखिर वो तारीख भी आ जाती है जब वासु और सपना के प्यार का एग्रीमेंट पूरा होने वाला है।
3: दिसंबर 19, 1979।
1: जाने की कल, और उस कल की राह देखते देखते उसकी आंखों में नासूर हो गए हैं। तुमने कितनी आसानी से भुला दिया उसे और चल पड़े मुझसे शादी करने। सुना है एक बार सपना के कहने पर तुम नदी में कूद गए थे इसलिए कि उसे मझधार में छोड़ने के लिए।
0: वासु पहुंच जाता है वापस अपने घर गोवा।
4: नमस्कार सासू माँ, कहिए आपके मिजाज कैसे हैं? आप इस तरह क्यों देख रही हैं? मैं हूँ वासु। आपने वक्त की जो हद बांधी थी वो पूरी हो गई। आपकी बेटी से शादी करने आया हूँ, लेकिन यहाँ दामाद का कोई स्वागत नहीं, खातिर वातर कुछ नहीं। बाय लागू प्रोफेसर साहब, आपका स्वास्थ्य कैसा है?
5: मेरे स्वास्थ्य को मारो गोली। पहले ये बता दो, तुम ऐसे फड़फड़ाते हिंदी कैसे बोल रहे हो? टकाल टकाल धमाल धमाल।
4: सासू जी की यही ख्वाहिश थी ना कि मैं हिंदी सीख सकूं। कहिए, कहा की भाषा सुनाऊं आपको? दिल्ली की तत्साली जुबान, मेरठ मुरादाबाद की खड़ी बोली, मथुरा वृंदावन की ब्रज भाषा, अयोध्या की अवधी, बिहार की भोजपुरी या पंजाब की पंजाबी। ओ सुनियो मकलांदे पेड़ियो की गले।
0: लेकिन जब संध्या के भाई रजा मुराद को ये बात पता लगती है कि वासु संध्या को छोड़कर वापस चला गया है तो वो गुंडों को वासु को जान से खत्म करने की सुपारी देता है।
6: ओ, हमें धोखा देकर भाग गया है। सुबह की फ्लाइट से वो पंजे पहुंच रहा है। सुना है वो किसी लड़की से मिलने आ रहा है। कुछ भी हो जाए उन दोनों को मिलने मत देना। उसके हाथ तोड़ दो, उसकी टांगे तोड़ दो, हो सके तो उसकी जान भी ले लो।
0: सपना मंदिर में वासु का इंतजार कर रही है तभी वहाँ बुक स्टोर कीपर आ जाता है जो कि शुरू से ही सपना पर गंदी नियत रखता है।
7: आज इतने दिनों के बाद हाथ लगी हो, भगवान कसम बिल्कुल नहीं छोड़ सकता।
0: सपना को अकेली पाकर बुक स्टोर कीपर सपना के साथ बलात्कार कर देता है। उधर गुंडे भी वासु पर प्राणघातक हमला करते हैं जिससे वासु सपना तक नहीं पहुंच पाता। और जब सपना और वासु मिलते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। सपना अपनी पवित्रता खो चुकी है और वासु अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।
8: ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा ये हाल?
9: सपना, ये हमारे प्यार की, हमारे मिलन की कीमत है।
8: वासु, लगता है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है। वासु,

0: तुम्हे क्या होगा सपना?
1: बाजू, मैंने अपने शरीर, अपना प्यार, अपनी पवित्रता तीनों को तुम्हारी अमानत समझकर कितना संभाल के रखा था, मगर तुम अब आए हो जब जान जाने के लिए तैयार बैठी है।
0: सपना, मैं भी तो जाती हुई जान अब तक मुट्ठी में पकड़े हुए हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए।
1: बस क्या हुआ बाजू, बोलो ना।
0: सपना, अपना तमाम दर्द, सारे आंसू जो मैंने सैकड़ों लड़ियों में पिरोए हैं, किसी तरह तुम तक पहुंचाना चाहता था।
1: बाजू, बाजू।
0: सपना, मेरी आंखें बंद हो रही है।
2: वासु और सपना का मिलन इस जन्म में अब होना मुश्किल है।
0: मैं मर रहा हूँ क्या?
1: मुझे छोड़ के मत जाओ बाजू। बाजू, हम क्या इस तरह मौत की बाहों में मिलने के लिए एक दूसरे से पिछड़े थे क्या? बाजू, बाजू, इससे पहले की बात आए, मुझे अपने साथ भगा ले चलो, मुझे अपने साथ भगा ले चलो बाजू।
0: सपना,
2: आखिर दोनों आत्महत्या कर लेते हैं।

0: तो श्रोताओं, ये थी आज की फिल्म एक दूजे के लिए। इस फिल्म को हिंदी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। रिलीज के कुछ दिनों के बाद ही इसे ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया गया था।
1: प्रेम की भाषा ही दूसरी है। इसमें जो हार जाता है उसे कहते हैं जीत गया, और जो जीत जाता है उसे कहते हैं हार गया। इसमें जीतने वाले शादी कर लेते हैं और हारने वाले एक दूजे के लिए जान दे देते हैं और अमर हो जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको आज की ये फिल्म पसंद आई होगी। अब आपके दोस्त प्रशांत मालवीय को अनुमति दे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी एक दूजे के लिए। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
1: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
1: सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
5: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान

0: पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद

0: की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटका।

हटाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। श्रोताओं, निमाड़ी लोकगीत में कलाकार हैं रामकृष्ण पटेल और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे रामकृष्ण पटेल और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: एहसास की जो जुबान बन गए,
0: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: नमस्कार श्रोताओं, सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। समय हुआ है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत का।
1: आपके मीत ये गीत।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट प्रशांत मालवीय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम आपके मीत ये गीत में, जहां आपकी पसंद के गाने होते हैं और उन गानों को सुरमई धागे में पिरोने का काम हमारा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फरमाइश पढ़ने का सिलसिला। कार्यक्रम में पहले गीत के फरमाइश करता हैं हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम साहिल और इनके साथी, जलाबाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, तेलंगाना निजामाबाद से शेखर लबक्ष, बेगम राबिया और शेख रही मुन्ना, जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका, प्रशांत और प्रियम, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान और उत्तम जमदाड़े, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाह, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदिबा और दानिश, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून और इनके साथी, डाबकी रोड अकोला से वी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव और अर्पिता, ग्राम जसवाड़ी से उखल्लू बड़वा है यशवंत, नागनपुरे और रविशंकर कवर से, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीत

कमलाकार मुस्कान और जितेंद्र फुलवाले, कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली हैं। इंदौर से वंदना मराज और ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक परी, स्वाति और प्रयाग चौधरी, कुंडेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती, खंडवा से संजय मारकंडे और इनके परिवारजन, मोटक्का माफी जिला खंडवा से दयाचंद सेन, मिशीलाल जी सेन, प्रेम भाई पूजा और योगेश सेन, आप सभी ने पसंद किया। साल 1968 में आई फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गाना, जो आज भी उतना ही ताज़ा लगता है, इसे अपनी मखमली आवाज़ से सजाया सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने। पर्दे पर इस अजनबीपन के एहसास को बेहद खूबसूरती से जिया था विनोद मेहरा और शबाना आज़मी ने। तो चलिए खो जाते हैं इस अजनबी एहसास में, सुनते हैं ये गाना।

क्या बात है, इस गाने को सुनकर तो दिल सच में कहीं ठहर सा जाता है। चलिए इसी ठहराव और मोहब्बत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं।

कार्यक्रम में अगले गीत के फरमाइश करता श्रोताओं के नाम बताते हैं। मां नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से, राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, ओम कुमारी सपना, धर्मेंद्र, मुकेश और मम्मी द्वारिका बाई और ऋषि, इंदौर लिंबोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी, नेपानगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश, खंडवा से श्यामाबाई रायकवार, किशोरनगर अमरावती महाराष्ट्र से हीरामन शिंडे, शिला देवी और सिद्धार्थ गोंडाने, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनोवर, सरला मनोवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से साक्षी ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीत कोसर, मोहम्मद साकी, भरत भाई और मोहम्मद हसनैन, सतना एमपीसी उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना और मोहम्मद रफी मंसूरी, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला चीनू, आसमा दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा है, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकामा खत्री, मोहम्मद अल्तमश और रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद गोगावा से हाजी इसाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी और साथी, माँ बिजासनी रेडियो श्रोता संघ माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता कटारे, उदय उज्जवल और मितांश कटारे, जूनापानी खालवा से कुंजीलाल काजडे, राज काजडे, राहुल कुमार दागू, दादा मोजीलाल पटेल, इंद्रजीत पटेल, सुमित्रा भाई और इनके साथी हैं, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके साथी हैं। गजल और फिल्मी गीतों का जब ऐसा संगम हो तो जहन में एक ही नाम आता है, फिल्म बाजार का। इसी फिल्म का गीत आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया। मीर तकी मीर की शायरी को जब खयाम साहब के रूहानी संगीत का साथ मिला तो जन्म हुआ इस गीत का, जिसे आप सभी ने पसंद किया है। और इस गीत में कमाल की बंदिश को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी तो यह गीत अमर हो गया। पर्दे पर फारूक शेख और सुप्रिया पाठक की सादगी ने इस गाने में जान फूंक दी है। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: खयाम साहब का संगीत वाकई सीधा दिल में उतर जाता है। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा अंतराल। आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके मीत, ये गीत कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ रहे हैं। पसंद करने वाले सभी श्रोताओं के नाम आपको बताते हैं। शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश उर्मिला, दीपक, दीपिका और नंदनी, निखिल और गौरांज पंचोली। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या और भाई सुच्चा सिंह पाठक। तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल जी विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पेठण से सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और बेबी सिया यादव। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फुलमाली, दुखनी सदफ, आरजू जो इकबाल, इमरान अहमद फुलवाले। कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमापरी राबिया, मंतशा, आशु अहमद फुलवाले और इनकी पूरी फैमिली। पाकुड़ झारखंड

नंदनी, निखिल और गौरांज पंचोली, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या और भाई सुच्चा सिंह पाठक, तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिशिलाल जी विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पेठण से सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और बेबी सिया जाधव, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फुलमाली दुखनी, सदफ आरजू जो इकबाल, इमरान अहमद फुलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमापरी राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले और इनकी पूरी फैमिली, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु और अर्णव आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना तई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब और अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर और अमनदीप, कालका से सुभाष चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा मयंक, रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जेतेग और मिका बिरक, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजीदीप, राजेश, राशि और शीतल, और इनके साथी हैं। तो चलिए, आप सभी की गुजारिश पर पेश है साल 1982 की ब्लॉकबस्टर और जज्बातों से भरी फिल्म निकाह का वो सदाबहार गीत, दिल की आरजू थी कि कोई दिलरुबा मिले। इस गाने को अपनी मखमली और पुरकशिश आवाज से सजाया महेंद्र कपूर और सलमा आगा ने। इस फिल्म के गानों की रूह है हसन कमाल साहब के लिखे हुए जज्बाती अल्फाज और संगीतकार रवि साहब का वो संगीत जो आज भी कानों में मिश्री घोल देता है। पर्दे पर राज बब्बर और सलमा आगा की केमिस्ट्री और इस गाने की कशिश देखने लायक है। फिलहाल तो दिल की गहराइयों को छूने वाले इस नगमे को आप सुनिए।

तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ चुनिंदा और दिल के करीब रहने वाली फरमाइशें जो आप ही की पसंद की थी। श्रोताओं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी बिना ये महफिल अधूरी है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त।

टू स्टेट्स, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: फिल्म वेक अप सिड से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
0: विविद भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

कपूर एंड सन्स इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाजों में अरमान मलिक का संगीत था। इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जब वी मेट इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से

0: रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये जवानी है दवानी फिल्म का नाम था। प्रीतम ने संगीत दिया और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, ने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

मां कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और मां बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोली मां तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ। फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना पगल,

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय दिन के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। शिवपुरी जिले में इस समय लोगों को मानसून का इंतजार है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि सोयाबीन, मूंगफली और उड़द जैसी फसलों की बोनी शुरू की जा सके। किसानों की सुविधा को ध्यान में

0: करते हुए जिला प्रशासन ने खाद वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया है। खरीफ सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए जिले के डबल लॉ खाद भंडारण केंद्र अब शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। इससे किसानों को समय पर यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे और बोनी का काम प्रभावित नहीं होगा। जिले में अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत भूखंडों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। ये सेल कॉलोनाइजर लाइसेंस, कॉलोनी विकास की अनुमति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम करेगी ताकि शहरों का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके। इस नई व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर को सौंपी गई है। सेल में राजस्व, नगरीय निकाय, पीएचई, बिजली वितरण कंपनी और पंजीयन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसी बीच जिला मुख्यालय पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जन परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पठड़कर ने यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से मिले सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जन कल्याण की दिशा में खनिया थाना में आयोजित 3 दिवसीय शिविर भी चर्चा में रहा। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 12,599 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण करते हुए लोगों को राहत प्रदान की गई। साथ ही आमजन को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। शिवपुरी के माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में प्रदेश का पहला जिला स्तरीय फिट इंडिया क्लब शुरू किया गया है। यहाँ आधुनिक जिम, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। मॉनसून की तैयारियों के बीच पोहरी में संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन आपदाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को जर्जर भवनों में शैक्षणिक गतिविधियां न चलाने और नदी नालों तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक में एमएसएमई उद्योगों के विस्तार और उद्योगों को आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि उद्योगों के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवासीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने लंबित आवासों को जल्द पूरा करने वाली सभी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। सामाजिक सरोकारों की बात करें तो जिले में 35वीं एनसीसी बटालियन के शिविर में सीनियर कैडेट्स ने रक्तदान किया। इस दौरान कुल 15 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। दूसरी ओर मंगलम परिसर में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर में 215 दिव्यांगजनों को जांच के बाद कृत्रिम हाथ, पैर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आईटीआई केंद्र में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 136 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 96 युवाओं का चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पीएम जनवन और धरती आभा अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खोड़ में जन चौपाल लगाई। उन्होंने बिजली, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, पेंशन और खाद्यान्न से जुड़ी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। और आखिर में बात योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिवपुरी जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिला मुख्यालय के पोलो ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
2: शिवपुरी जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। सखियों, आज का नारी जगत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी मोना दफ्तरी। स्वीकार करें हमारे

अपना प्यार भरा नमस्कार। बहनों, तेज गर्मी, उमस, सूर्यनारायण की तपती धूप के साए में जब मानव मन कुमला गया, झुलस गया, तब हमें कितनी बेसब्री से याद आई बरखा रानी की, वर्षा ऋतु की। ऐसा ही होता है बहनों, कदर तभी होती है किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रकृति की, जब हम उस चीज को तरस रहे होते हैं या फिर उसे खो देते हैं। अब बूंदों का अमृत तृप्ति की तरह हम सभी स्वागत कर रहे हैं ना बरखा रानी का। ऐसे ही सखियों, रिश्ते भी हमारे अनमोल हैं। जब साथ होते हैं ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब दूरी हो जाती है या फिर हमेशा के लिए खो जाते हैं तब हम तरसते हैं, हमें याद आती है। ऐसे ही बहनों, हमारे शरीर से भी हमारा ऐसा ही संबंध है, ऐसा ही रिश्ता है। हम लापरवाही करते हैं, बेफिक्र रहते हैं, और फिर जब हमारी तबीयत खराब होती है या किसी तरह की शारीरिक व्याधि से हम गुजरते हैं तब हमें शारीरिक क्षमताओं की कमी का पता लगता है, और फिर हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तब हम आते हैं अपनी योग्यता यानी जीवन शैली को व्यवस्थित करने में। सखियों, हम जानते हैं कि आप समझ ही गई हैं कि हम किस विषय पर आपसे बात कर रहे हैं। जी हाँ सखियों, हमारा विषय योग ही है, आप ठीक समझिए। आज हम जिस विषय पर जोर दे रहे हैं वह है या सामुदायिक योग के लाभ। सामुदायिक योग से आप समझ ही गई ना बहनों कि जब हम समुदाय के साथ या अपनी हम उम्र या फिर ऐसे मोहल्ले या कॉलोनी में एक साथ मिलकर योग करते हैं तो उस योग के हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी कई तरह के लाभ होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम कुछ समय निकालते हैं खुद के लिए। जो पल हम जीते हैं ना वह सिर्फ हमारे ही होते हैं, और कुछ समय के लिए घर परिवार नौकरी की टेंशन से हम दूर हो जाते हैं। अपने सामुदायिक योग के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं अपने आप से। सबके विचार साझा होते हैं, एक दूसरे की खूबी, हॉबी, यहाँ तक कि पहनने का, बात करने का, उठने बैठने का सलीका भी, और जो अतिरिक्त योग्यता है वह जब हमें प्रभावित करती तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव आता है। आज के समय में सखियों सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और आप जानती ही हैं, हमें बताने की आवश्यकता वैसे है नहीं, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को लेकर जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं वह किसी से छुपी नहीं है। बहनों, जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, और साथ ही विचारों का भी जो आहट होती है वह बिल्कुल साफ सुथरी होती है, हम आईने की तरह खुद से रूबरू होते हैं। इसलिए बहनों, जब भी मौका मिले सोचें, विचारें, जुड़ें, अपने आसपास कहीं पर अगर सामुदायिक रूप से योग हो रहा है तो वहाँ जाएं, और नहीं हो रहा है तो खुद पहल करें और अन्य बहनों को भी जोड़ें। फिर देखिए कैसे आपकी सुबह तरोताजा होती है। आगे भी हम इस विषय पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं पहले कार्यक्रम का यह गीत।

0: हमने सखियों यह गीत सुना और अब सुनते हैं यह संदेश।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: बहनों आपने यह संदेश सुना और अब हम जानते हैं कि आपको इंतजार है कि आज के नारी जगत कार्यक्रम का आकर्षण क्या है। आज का आकर्षण सच में बहुत ही अनमोल है क्योंकि कुछ बहनें हमारे साथ हैं अपने जीवन के अनुभव के साथ। जी हाँ बहनों, आप जानते ही हैं कि जब हम किसी विषय पर सिर्फ बातें ही करते रहे या फिर किताबों में पढ़े या सुने, तो जब तक हम उस पर कहीं पर किसी के अनुभव वास्तविक और सत्य न जान ले, तब तक हमें उस पर भरोसा नहीं होता है। तो आज हमने शामिल किया है हमारी सहभागी बहनों को योग जीवन के अनुभव के साथ, योग का जीवन में महत्व। अब हमारे साथ है हमारी बहन क्षमा केड़े, जिन्होंने व्यस्ततम जीवन में से अपनी दिनचर्या में योग का कैसे समावेश किया, योग करने के पहले वह किस तरह के जीवन को जी रही थी और योग के बाद उनके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आए और जो परिणाम है वह अपनी वाणी से वह हमारे समक्ष रख रही हैं। बहन क्षमा खेड़े।
9: सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्ते और आदरणीय मोना दीदी आपको भी मेरा सादर नमस्ते। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। मैं श्रीमती क्षमा खेड़े रामनगर साई मंदिर खंडवा में रहती हूँ और मैं शासकीय हाई स्कूल बड़गांव माली में उच्च श्रेणी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे योग की वजह से आकाशवाणी में अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला। श्रोताओं, हमारे पूर्वज कहते हैं आए हैं कि अच्छी शिक्षा कभी भी आपको अच्छा अवसर ही प्रदान करेगी और इसके लिए मैं अपनी योग गुरु अनमोले मैडम को नमन करती हूँ। हालांकि वे मुझसे छोटी हैं, परंतु गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च और पूजनीय होता है। चूँकि मैं आज आपको अपनी दिनचर्या में योग का समावेश बताने जा रही हूँ, पहले मैं सुबह

0: 5:30 6 के लगभग उठ जाया करती थी। वही सब काम घरेलू करना, जैसे तैसे खाना खाना और स्कूल के लिए निकल जाना। शाम को जब लौटना तो बस एकदम न्यूट्रल, थकान, चिड़चिड़ा मूड लेकर घर आना और फिर वही सब शाम के कार्य करना। मतलब पूरी दिनचर्या ही मेरी पूरी जीवन शैली अस्त व्यस्त थी। थकान चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती थी। फिर मैं उस दिन को याद करती हूँ जब मैं दीपा मैडम की योग क्लास में पहले दिन उपस्थित हुई। और सच पूछिए तो मैं यही सोच कर गई थी कि केवल जाकर देखती हूँ, इतनी दूर प्रतिदिन सुबह से उठकर नहीं आ सकूँगी। परंतु आज योग की आदत मुझ में ऐसी पड़ गई कि मैं प्रातः 4 बजे उठ जाती हूँ बगैर अलार्म के, और स्वस्थ दिनचर्या की शुरुआत स्नान, ध्यान, पूजन से करती हूँ और स्वयं को दिन भर तरोताज़ा रखती हूँ। और प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक दीपा जी की योग क्लास को अटेंड करती हूँ। श्रोताओं, मुझ पर पारिवारिक एवं शासकीय दोनों ही जवाबदारियाँ हैं। इन दोहरी जवाबदारियों को वहन करने में मेरी स्वयं की दिनचर्या एकदम गड़बड़ हो गई थी, लेकिन जब से मैंने योग ज्वाइन किया कि मेरी दिनचर्या ही बदल गई। मुझ में जो परिवर्तन आया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शरीर की टूटन, जकड़न, थकान, चिड़चिड़ापन सब गायब हो गया। हर वक्त स्फूर्ति बनी रहती है। चूँकि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, घर पर बुजुर्ग 90 वर्ष की माताजी हैं, बच्चे दोनों बाहर हैं, घर का, स्कूल का संपूर्ण कार्य स्वयं खुद करती हूँ बगैर किसी काम वाले की मदद से, और स्वयं को स्वस्थ और स्फूर्तिवान रखती हूँ। अब मुझे थकान, चिड़चिड़ापन कुछ भी नहीं मालूम, सब भूल गई। इसलिए मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि योगा न सिर्फ शारीरिक बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखता है। योग हमारे तन को मन से जोड़ने का काम करता है। कहावत है कि ना, यही कहावत कहते हैं कि तन स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम महिलाएँ घर में सबका ख्याल रखती हैं, पर लेकिन जब स्वयं की बारी आती है ना तो अनदेखा कर देती हैं। मैं कहना चाहूँगी कि हम स्वस्थ तो घर स्वस्थ। आप केवल एक दिन बिस्तर पर लेट जाइए, फिर देखिए पूरे घर का परिवेश ही बदल जाएगा। इसके लिए हमें अपने लिए भी समय निकालना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सुबह का और हो सके तो थोड़ा शाम का स्वयं के लिए, और योग को अपनाओ, उसके आदि हो जाओ। हमको ऐसा लगना चाहिए कि अरे आज तो मैंने योग नहीं किया, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। योग के बहुत फ़ायदे, इन्हें मैं अगर गिनाऊं तो हम गिन नहीं पाएंगे, और बताऊं तो लोग यही सुन लेंगे और कहेंगे कि हमसे तो नहीं होगा, हमारे पास समय नहीं है, हम थक जाते हैं, सुबह से उठा नहीं जाता, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन यदि एक बार इसकी आदत डल जाती है तो सच मानो इसके फ़ायदे सुनोगे नहीं, स्वयं अनुभव करोगे। और अभी तक आपके पास समय नहीं था, लेकिन अब आपकी दिनचर्या में योग को समय मिल चुका होगा। आप स्वस्थ और कुशल जीवन परिवार को भी दें और स्वयं भी अपनाएं। श्रोताओं, मैं जब भी आपको अगली बार आपसे मिलूंगी आकाशवाणी के माध्यम से, तो सर्वप्रथम यही पूछूंगी कि आपने अपनी दिनचर्या में योग को शामिल किया या नहीं। मैंने तो कर लिया, अब योग मेरी आदत बन चुकी है। इसके लिए मैं अपनी योग शिक्षिका दीपा जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनके मार्गदर्शन ने मेरी जीवन शैली ही बदल दी। अंत में मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूँगी कि योग अपनाइए, परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग कीजिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। निरोगी रहिए। जय हिंद। धन्यवाद
1: बहनों। अब हमारे साथ हैं हमारी बहन राधा एतालकर। हमारी राधा बहन किसी समय एलर्जी की समस्या से जूझ रही थी, और दवाइयों का सेवन, अतिरिक्त नींद ने कहीं न कहीं जीवन को जो सुचारू रूप से चलायमान होना चाहिए उससे इन्हें विमुख कर दिया था। लेकिन योग को अपनाकर इनके जीवन में जो बदलाव आया है, सकारात्मक और वास्तविक, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी।
2: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राधा एतालकर, रामनगर निवासी, मैं एक गृहिणी हूँ। परिवार के स्वास्थ्य के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य की भी हम महिलाओं की जिम्मेदारी होती है ना बहनों। पर्यावरण प्रदूषण, गलत दिनचर्या, गलत खान पान के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक सामान्य समस्या है एलर्जी की। धूल, धुआं, पराक्कन, मौसम परिवर्तन के चलते छींके आना, नाक बहना, आँखों में लाली, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाना जैसी समस्याएं हमें हो जाती हैं। श्रोता

0: मेरा अनुभव ये है कि नियमित योग और उचित दिनचर्या अपनाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। योग का पहला सिद्धांत यह है कि प्रकृति के अनुरूप जीवन, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना, शुद्ध वायु में भ्रमण करना, सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करना स्वास्थ्य की मजबूत नींव रखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति क्रिया करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है और एलर्जी की समस्या काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। योगा के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा में जलनीति और नस्य क्रिया की जाती है। इन क्रियाओं से श्वसन तंत्र मजबूत होकर फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है और एलर्जी की समस्या को कम किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा करके मैंने काफ़ी हद तक अपनी एलर्जी की समस्या को मात दी है। जहां एलर्जी की समस्या कम करने के लिए दवाई खाकर सोना मेरे लिए अनिवार्य था, वही मैंने आज योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर दवाइयों का सेवन पूर्णतः बंद कर दिया है। आज मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी मेरे योग गुरु डॉक्टर तिवारी सर और दीपा अनमोले दीदी का। इनके योग्य मार्गदर्शन में ही योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर आज मैं स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। योग जीवन जीने की कला है। केवल एक ही दिन योग दिवस का उत्सव न मनाते हुए दिनचर्या में हमें योग शामिल करना ही होगा। योग, ध्यान और सकारात्मक चिंतन तनाव को कम करके शरीर और मन दोनों को संतुलित रखते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। तो आइए श्रोताओं, अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। रोज थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, प्रतिदिन योग करें, प्रकृति के निकट रहें, स्वास्थ्य को अपने सबसे बड़ी संपत्ति बनाएं और पहला सुख निरोगी काया को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।
1: बहनों, अब हमारे साथ हैं हमारी बहन संध्या पुराणिक। हमारी बहन संध्या किसी समय हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, फिर उन्होंने योग को जीवन में अपनाया और एक सकारात्मक पहल ने उनका जीवन ही बदल दिया और इसी बदलाव के साथ, अपने विचारों के साथ, अनुभव के साथ अब वो हमारे साथ हैं।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी प्यारी बहन मोना दफ्तरी मैडम को सादर नमन। मैं श्रीमती संध्या पुराणिक गवर्नमेंट टीचर सतवाड़ा में पदस्थ हूँ। मुझे सन 2022 में हार्ट अटैक आया था। ECG में पता चला 3 ब्लॉकेज है। मुझे इंदौर रेफर किया गया। गोकुलदास हॉस्पिटल में 3 स्टंट डाले गए। थोड़े समय मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे बहुत कमजोरी आने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पाऊँगी। सीढ़ी चढ़ने उतरने में मैं हाँफने लगी थी और बहुत जल्दी थक जाती थी। फिर मैंने अपने आप को योग की ओर मोड़ा। मैंने श्रीमती दीपा अनमोले मैडम की योग क्लास, जो कि फ्री में करवाती हैं, ज्वाइन की, जो कि रामनगर के पास अभिनंदन सिटी में रोज़ 5:30 बजे से 6:30 बजे तक सामुदायिक योगा करने से मुझे बहुत फ़ायदा लगने लगा। हार्ट के लिए अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी प्राणायाम होता है। रोज़ आधा घंटा करने से मुझे बहुत लाभ हुआ। प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, मंडूकासन, सूर्य नमस्कार, हाथों से करने वाले व्यायाम, लेट कर किए जाने वाले व्यायाम, पीठ के व्यायाम करने से मुझे बहुत लाभ हुआ। क्योंकि मैं जब स्कूल जाती हूँ गाड़ी चलाकर, तो मुझे कंधों में दर्द और पीठ

0: में जकड़न होती थी। इसको करने से मेरी जकड़न और दर्द गायब हो गया। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें योग करना भी बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का 5 दिवसीय शिविर भी अटेंड किया। इससे मेरा पूरा शरीर डिटॉक्स हो गया। मेरा यह संदेश है कि हर मनुष्य की भागदौड़ की लाइफ में योग को जोड़ना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारा पूरा शरीर एनर्जेटिक बना रहता है। हम दिन भर अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, दिन भर हल्का महसूस होता है, क्योंकि आज का मनुष्य बीमारियों से प्रतिदिन लड़ रहा है। दवाइयों से, उपचारों से, तरह तरह की चिकित्सा पद्धतियों से मेरे मन में एक विचार आया, क्या बीमारी सिर्फ शरीर में होती है या उसका बीज कहीं और भी छिपा होता है? इसका उत्तर मुझे योग प्राणायाम करने से मिला और मैंने महसूस किया कि जब जब मन लगातार तनाव में रहता है, तब भीतर भय और असंतोष का प्रवाह चलता रहता है। शरीर भी उसी भाषा को बोलने लगता है। शरीर की हर कोशिश मन की अवस्था को सुनने लगती है। जब मन बीमारियों के कारण बिखरा होता है, तब शरीर भी उस बिखराव को महसूस करता है। इसलिए योग और ध्यान की परंपराएं हमें यह प्रेरणा देती है कि मन को यदि शून्य की स्थिति में स्थित किया जाए तो शरीर में अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन होता है। शरीर में यह अद्भुत चमत्कारी जो होता है, उससे शरीर और मन का गहराई से जुड़ाव होता है। जब मन विचारों की पकड़ से ढीला होने लगता है, जब शरीर में गहरी विश्राम की अवस्था उत्पन्न होती है, इस स्थिति में शरीर की उपचार प्रणाली सक्रिय हो जाती है। कोशिकाएं तेजी से मरम्मत करने लगती है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और भीतर संतुलन वापस आने लगता है। ये सब मैंने सामूहिक योग, ध्यान, प्राणायाम से अपने आप को स्वस्थ कर रही हूँ। अब मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे हार्ट में 3 स्टंट डले हैं। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करने लगी हूँ। जयतु योगम, करो योग, रहो निरोग।
1: सखियों, योग का जीवन में महत्व, सहभागी बहनों के योग जीवन के अनुभव हमने साझा किए और हमारे साथी हमारी बहनें शमा खेड़े, राधा हितालकर और संध्या पुराणिक। अब सुनते हैं यह गीत।

सखियों, इस गीत के बाद अब हमारा जो विषय है ना, वह हम बहनों से ही विशेष रूप से जुड़ा है, मेनोपॉज। हाँ बहनों, रजोनिवृत्ति और योग। मेनोपॉज एक ऐसा समय बहनों जो हर महिला के जीवन में आता ही आता है। बहनों, यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक जैविक अवस्था है। पहले चरण में पीरियड अनियमित होने लगते हैं, तेज गर्मी लगना, पसीना आना, नींद ना आना, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन और कई तरह के ऐसे बदलाव जो हम बहनें खुद ही नहीं समझ पाती हैं, यह होती है शुरुआत। अब ऐसे में योग हमें हार्मोनल असंतुलन दूर करने और जो पैल्विक हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का मदद करता है। योग आसन मासिक धर्म के दर्द तकलीफ से आज़ादी पूर्णता दिलाने का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम करने और राहत दिलाने में हमें मदद जरूर करते हैं। अब आसनों की बात की जाए तो तितली आसन, भुजंगासन, धनुरासन, विपरीत करणी आसन, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम और योग प्राणायाम में आप कहीं देख पढ़कर सुनकर ना ही पहल करें, योग के प्रशिक्षक से पहले सलाह लें, क्योंकि हर बहन की अपनी जो क्षमताएं, शारीरिक अवस्था, उम्र और जो हो सकता है कई बीमारियां हो, वह अलग अलग होती है। तो सलाह लेकर ही योग आसन करें और राहत प्राप्त करें। और सखियो, अब आज की रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी खसखस और नारियल के लड्डू। हमें जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से हमें सामग्री लेनी है। अब खसखस को पहले कढ़ाई में बगैर घी या तेल डाले धीमी आंच पर सिकाई कर लें और अलग रख दें। अब हमें दूसरी तैयारी करनी है। नारियल कच्चा कद्दूकस कर लें और अच्छे से उसमें से पानी अलग कर दें और जो बचा हुआ मिश्रण है वह अलग कर लें। अब कढ़ाई में घी डालें, ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के सिकाई करें। अब इसमें मावा डालकर धीमी आंच पर सिकाई करें। नारियल कसा हुआ, खसखस, पीसी शक्कर डाल करके धीमी आंच पर लगातार भूनते रहें जब तक कढ़ाई से जो मिश्रण छोड़ने न लगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं। बस मिश्रण जब ठंडा हो जाए तो लड्डू बनाकर फ्रिज में रखें और तैयार है आपके खसखस और नारियल के लड्डू। अब सुनते हैं यह गीत।

सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब समय हो रहा है आज के नारी जगत कार्यक्रम को संपन्न करने का। आज आपके साथ ही आपकी रेडियो सखी मोना दफ्तरी अनुमति दे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नारी जगत कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।
1: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
2: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
3: इश्क़ दी चाशने, ओ मीठी मीठी चाशने।
1: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
3: ओ मीठी मीठी चाशने।
0: इस समय सुबह के 10:40 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं बाबुल सुप्रियो।

सुगम संगीत में आज आपने सुने बाबुल सुप्रियो के गाए कुछ नगमे। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

हम सुन रहे थे श्री राम भजन चंदनदास की आवाज़ में। राजेंद्र राजवंशी ने इसे लिखा और सरस्वती कुमार दीपक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे स्वर बहार एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने, अनजान के बोल और श्याम शर्मा ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
5: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
4: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
5: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
4: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
5: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
4: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और सुनते हैं रंग तरंग का अगला नगमा। नुमाइश एल्बम से पंकज उदास की आवाज़ है, जफ्फार गोरखपुरी ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में गीत गजल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज में, जिसे बेनी सतामकर ने संगीतबद्ध किया है। सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

सरकती सरकती सरक

मुकर्रर की आवाज आई तो वह शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस नगमे को, जिसे खयाम ने संगीतबद्ध किया और मधुकर राजस्थानी ने जिसे लिखा है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा सुधा मल्होत्रा की आवाज में। पीरजादा सफक लखनवी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने इस नगमे को संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत पंकज उदास और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से जुड़ा हुआ यह गीत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, यानी आज के कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी गीत है जिसे हमने चुना है वेलवेट वॉइस हरिहरन एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने और इसे लिखा है मुशीर ने। चलिए सुनते हैं ये नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा

0: विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द भी वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देववर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी

0: परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत, गीता दत्त की आवाज़ में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत, जो कि है 12 o'clock फिल्म से, गीता दत्त की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने, और कनू रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा कुछ ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं, तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का

ना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोल्का डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया, तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जफी महट के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब भी नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियाँ जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी, वह तो मानो हर फैशन प्रेमी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है। तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक फैंस हर 20 साल बाद पलट कर आती है, तो हर चीज़ जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े साड़ियाँ, बालों की भी वही फैशन। पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियाँ राज्यानुसार वो ही रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र की पैठणी, नवारी, बंगाल की बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, ज़माना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 में बनी आलमारा देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं, माँ तो माँ होती है। बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी, बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दिए हैं और कहती हैं कि अब ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवाना, अनगिनत ड्रेस श्रृंखला हैं। और इन सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते। काफ़ी श्रोताओं ने बता दिए, तो गाने वो बता नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात ज़रूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ। और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी न किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा। उस मन की बात को हमसे कह दीजिए और सुनिए ये वाला नगमा।

हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को। शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल रेशम ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिज़ाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिज़ाइन करते थे। अभी ड्रेस डिज़ाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मज़ेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पैंट पतली टांगें लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम आज साड़ी पहन शर्माई, बड़ी खूबसूरत सी बात वो लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौगजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, और वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री

ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती हैं साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं, इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हर ज़माने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो के लिखती हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फबे फबे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्त्र को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफ़ी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज़्यादा बड़ी होती थी जी। वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था पहन नहीं पाए, तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज़्यादा अपनाया है, ज़्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं देखिए क्या है, ये जो चीज़ें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा, अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज़ जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है, और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज़ की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज़ बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में को कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती, HMT टाइटन की घड़ी के साथ। अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है, तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे, बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से बात याद आई 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखाकर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन, क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली ही वीना रॉय ने पहनी है, और रंगोली चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है, क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे,

महिला आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी। बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी, वह उनके साथ गई। साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए। तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई। तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी, यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी उसी को देखकर बनाए। बहुत बढ़िया बात है, ये भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी, और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में। और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आँख बंद कीजिए, आँख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, जरा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिलाओं दोनों श्रोताओं पर लागू होती है। कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, जरा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आँख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें आँख खोलने के लिए, तो कहीं हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकती हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नज़रों में कृति सेनन भी है, और कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आँख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती हैं, तो ब्रह्मचारी में मुमताज़ की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं, जैकी श्रॉफ को उन धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज़ और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहना कर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है, बस और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझ कर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े, बोली, सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति, आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए।

0: कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विग पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं, पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो विग पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है, तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहाँ भी घूमने गए वहाँ पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फ़ोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं, हुआ होगा ना। ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहाँ की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो जरूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना, आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिज़ाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी, जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बी आर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फ़ोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है, कोई असम घूमने गया था तो फ़ोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है, कश्मीरी लिबास में 300 रुपये के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फ़ोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहाँ के कपड़े पहनकर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते, बहू जापान गई थी तो वहाँ की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फ़ोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी, बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फ़ोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को। उन्हें एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सल्यूट करने लग जाते हैं, क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याना, इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी, नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फ़ोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की इन उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी, मैं भी बहुत फैशनेबल

रहे हैं वो बड़े बाल बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मान कर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता, फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज की बड़ी अच्छी वो बताई है कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज अब फिर से आ गए हैं। हाँ कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं, जब रंगमंच में आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी जिंदगी रह सकते हैं, सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जवी मैट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा किसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, और जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियाँ पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जवी मैट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियाँ, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था, जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला, पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला फैशन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूँगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है, जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लैगिंग

पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो। किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है और इस फिल्म के बारे में

के लिए आता था और कहता था ये वाली डिजाइन बना दो। यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिजाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है। शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ। और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है। और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी, तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए। और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं। नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

0: हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: करता है।
1: ऐसा नहीं है कि पड़ोसी केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: साथ मैं अभिषेक कटियार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल पटेल ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में जबलपुर के पास रानी दुर्गावती की समाधि स्थल नरई नाना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम भोपाल स्थित रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना तथा जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी उपस्थित रहेंगे। अभियान के तहत आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरे पर हैं। आयोग नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव ले रहा है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयवान सिंह पवैया सहित वीआईपी सर्किट हाउस में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आयोग की टीम संभाग आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ वृहद समीक्षात्मक बैठक भी करेगी। बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में सतत रूप से नवाचारों की आवश्यकता है। प्रदेश में धार्मिक, प्राकृतिक, पुराधरोहर से संबंधित पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हैं। कल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आवश्यक मार्गदर्शन के लिए गाइड की व्यवस्था को सशक्त बनाने और विभिन्न व्यंजनों का आनंद दिलवाने के लिए कार्य की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। युवाओं को बड़ी संख्या में इन कार्यों से रोजगार मिलेगा। कौशल विकास और रोजगार विभाग का पर्यटन विभाग से तालमेल स्थापित कर यह कार्य संभव है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस वर्ष चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। हॉकी इंडिया ने

आज से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम के नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा चानू युवा टीम की कप्तान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षा रानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, भिंड और मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में उमरिया स्थित आश्रम परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। आगरमालवा के बड़ौद में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण शिविर में हितग्राहियों को मौके पर ही कृत्रिम अंग और कैलिपर्स वितरित किए गए। शिवपुरी में जिला प्रशासन ने कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी नियमों में लापरवाही बरतने पर 8 संस्थानों को सील कर दिया है। और गुना कलेक्टर के आदेश के मुताबिक आगामी 23 अगस्त तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +989128101099।

0: 1115, दूसरा नंबर है +989128109109, तीसरा नंबर +989128109102, और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के

0: जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत

0: पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्य जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत।

0: और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम. सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं. संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ. और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है. आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए. नमस्कार.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का
2: नमस्कार।
1: क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूँ आपके सामने। बैठी
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो मैंने ये जानना चाहा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए,

0: की बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन
1: में। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
0: हाँ, और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
1: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
0: और या प्याज का सलाद खाना हो ना उसमें भी अचार डालकर
1: खा सकते हैं
0: मस्त।
1: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती
0: शान होते। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके होंगे
1: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है उस पर हमें लिख कर भेजिए।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
1: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
0: संयम
1: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
0: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिख कर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहाँ कहाँ संयम खो दिया था
1: या फिर झुंझला उठे।
0: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
1: संयम टूट गया।
0: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
1: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
0: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें संयम क्या है। संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
1: और कब कब खो दिया संयम,
0: वो तो बताना ही है क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
1: भी है
0: ना।
1: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी, कर्नाटक,
1: नरम मुलायम बहुत सुंदर।
0: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
1: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
0: क्या बात है। तो और देखिए सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
0: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
0: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
0: बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
1: सुनवा देते हैं गीत।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हैं। हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें

0: अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इल्कल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना है,
1: खरीदनी पड़ेगी, है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग, बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इल्कल साड़ी, जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इल्कल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इल्कल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इल्कल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इल्कल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इल्कल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे देनी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इल्कल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इल्कल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं, बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इल्कल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का नाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इल्कल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है, और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इल्कल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इल्कल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा अभी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है, और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है, और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इल्कल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन के जा सकते हैं।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है, तो सीखा भी जा सकता है,
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ।
1: हाँ।
0: यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है, और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
1: उतना ही समय में साड़ियां भी पहन सकते, उसी तरह से पहना भी जाता है, लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और होता है,
0: ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर

0: समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए, और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती
0: है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है,
1: बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही, और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा। हाँ। रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे। संयम से काम है।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है, समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किस से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।
1: तो वो एक गलत है, वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी,
1: की भाषा
0: उसे
1: का।
0: आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है, हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान

0: जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
0: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
1: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
0: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
1: सब कुछ बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास, उसका सदुपयोग करना चाहिए,
0: हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा है, नहीं जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
1: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
0: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
1: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
0: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखती है कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे

0: बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली, जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है, जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में, अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया, अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं, मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है, उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य, मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूँ कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों और सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं, कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
1: इस
0: नहीं
1: साल
0: तो
1: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
0: जिंदगी
1: और इतना सुंदर जीवन है मिला
0: उसको
1: है,
0: हम खत्म कर देते
1: जी। तो बच्चों को ये हमें कि, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते, उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहेंगे, ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें इस
0: ये
1: तरह
0: संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम

0: आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही
1: समाप्त कर दे,
0: समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का,
1: कि गाना
0: सुनाना चाहिए।
1: सुना

0: मंदाकिनी जी,
1: जी
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल

0: मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है, ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया
1: जा सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्स्चर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रस्सा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
1: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
0: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते लेते हैं, दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। जब

0: टुकड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सूखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी ना जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता अभी भी आता है।
2: उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
2: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
2: जी जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़

0: था, और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था, और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो, और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी, और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
0: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें, और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्ज़ाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्ज़ाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है। बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी हैं और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह

0: की चुनौती होती है। ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी
1: पड़ती है? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में
0: जी,
1: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
0: जी जी, चित्र कला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
1: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
0: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
1: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
0: जी,
1: है।
0: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
1: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज ख़त्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
0: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
1: जी।
2: वो शाम कुछ

0: थी।
1: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
2: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
2: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
2: और

0: तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है
1: जी।
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी। हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमैन शो था बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख कर के मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ ख़ास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा कर के कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था। तो

0: इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ। और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके। और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र, वो जो उनको मैंने भेंट करे थे, वापस लौटा दिए। और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे। और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी, जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है। उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं, मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो आपने,
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चलेंगे प्राग, और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊँगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी,

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी

0: ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में। और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारण जो है भारत भवन में थे, और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी। मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक, तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
1: जी।
0: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह कर के अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पर जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था। मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
0: हाँ।
1: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
0: ये जो मेरी किताबें हैं, इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में। और उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफ़ी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पर लिखा है।
1: जी जी।
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो, तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी
1: जी।
0: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है,
1: कभी
0: मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था। और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, सिक्स हु डिक्लाइन ट्रिनाले।

0: तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रेनाल को जो है
1: जी
0: कैंसल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे, तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था,
1: जी जी
0: तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नज़रें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए।
1: जी
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ
0: बहुत ही
1: होगा
0: आश्चर्य था,
1: जैसे।
0: क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी
1: जी
0: भीड़ थी,
1: जी
0: इतना सारा क्राउड था। बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना
1: बिल्कुल
0: उड़ती सी नज़र, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी
1: जी
0: क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके
1: जी
0: हैं।
1: यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस
0: इस
1: बात का
0: बात का
1: वादा
0: वादा
1: कर
0: कर
1: लो,
0: लूँ
1: सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।
0: हाँ।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता

0: आ चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नज़र नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
1: जी
0: वो।
1: जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
0: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
1: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
0: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसका हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
1: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
0: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं
1: जी।
0: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज़ समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियाँ हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
1: जी जी जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल

0: जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि
1: जी
0: मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी जी
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी, यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,
1: जी, सुनते हैं
0: ये
1: ये
0: वाला
1: गाना।
0: सुनता।
1: वो है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है हमारी कला

0: जो है अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, ये वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
1: जी। और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
0: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम

0: रूप सामने आता है, ये वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है, और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
1: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
0: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
1: जी जी।
0: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है, और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
1: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये ज़रूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
0: हाँ,
1: ये भी थोड़ा सा बताइए।
0: ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रदा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी, अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा समय आप अपने काम को देंगे, उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है, ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं, और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है। आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं, तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों, मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
1: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है। जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आए जो वो जिंदगी में तो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पड़ा था एक अनजानी दुनिया में। उनका दामन थाम खुशियों की गुल्लक भरते रहे, उनकी प्यार भरे निगाहों ने फूलों की बारिश की, अधरों ने लिख दी जिंदगी की नई वसीयत और फिर जिंदगी ख्वाब बन गई।

जब जिंदगी की रफ्तार में इंसान खुद को दौड़ता हुआ रोबोट बना लेता है, जब इंसान महज लफ्ज का जादूगर हो जाता है, जब इंसान में जज्बात नहीं रह जाते, तो वो इंसान नहीं बल्कि एक पुर्जा में तब्दील हो जाता है। जिंदगी में धूप, बारिश, नमी, बादल का एहसास बना रहे, इसलिए वक्त निकाल कर खुद से गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है।

हमदर्द, हमसाया, हमसफर का जुदा होना जिंदगी जैसे अंधेरे से घिर जाती है। जाने वाला चला जाता है दूर, कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल। कुछ अजीब है ये दिल, अजीब है ये जिंदगी।

वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत कभी स्वीकारोक्ति की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत में जलकर भी अपनी और उसकी राहें रोशन कर लेते हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं आती सच्ची मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत की राहों में चलते हुए भटक जाते हैं। वे नहीं समझ पाते मोहब्बत की गहराई। ऐसे में तन्हाई मुस्कान बनकर उनका साथ निभाती है।

कुछ दर्द भरी यादों की लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है, कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाती भी हैं, हमें सिखाती भी हैं, कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं।

FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओ आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओ कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओ ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओ जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदे गिरती रहती है। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओ कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है, इससे संभवतः

0: मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful. Beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।

0: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित

0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे।

0: फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
2: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
2: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
2: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
2: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
2: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
2: जी,
0: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि

0: करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओ, आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओ, ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित किए जा रहे हैं और अब प्रसारित होगा युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी।

0: हमारा दूसरा प्रश्न, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? साथियों, इन दोनों ही पत्रों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तो आइए अब आपको सुनाते हैं हमारे युवा साथी गौरव गावशिंदे के हमारे युवा श्रोताओं के लिए मोटिवेशनल विचार।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव गावशिंदे है, मैं खंडवा निवासी हूँ एंड करंटली मैं कंटेंट एंड पीआर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों, खिड़की से आती गुनगुनी धूप, हाथ में चाय का कुल्हड़ और कानों में गूंजती मेरी आवाज़, स्वागत है आप सभी का। आज मैं यहाँ किसी नेता की तरह भाषण देने नहीं आया हूँ और ना ही बड़ा भाई बनकर ज्ञान बांटने आया हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ उस खास एहसास की जो इस वक्त आपके सीने की बाई तरफ धड़क रहा है। हाँ, आज बात आपके सपनों की, आपके संघर्षों की और आपकी उस खामोश जिद की होगी जिसे दुनिया युवा शक्ति कहती है। मुझे पता है कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए डर लगता है ना, करियर का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कभी अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा। दोस्तों, अगर ये डर लगता है ना तो मुबारक हो, तुम जिंदा हो और तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जानते हो, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जिनके रास्तों में मुश्किलें आती है। याद करो शहीद आजम भगत सिंह को, हमारे और आपके जैसी ही उम्र थी उनकी। जब हम अपने करियर की उलझनों में फंसे होते हैं, वो लड़का देश की आज़ादी का ख्वाब देख रहा था, फांसी का फंदा सामने था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि उनके दिल में देश के लिए एक ऐसी मोहब्बत थी जिसके आगे मौत भी छोटी पड़ गई। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो जानते ही होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमारे इसी डर और सपनों को एक नया हौसला दिया था। वो कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। कलाम साहब ने हमें सिखाया कि बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, अगर तुम्हारे इरादों में दम है ना, तो तुम अखबार बेचने वाले लड़के से इस देश के राष्ट्रपति भी बन सकते हो। आज भारत का हर युवक और युवती कलाम साहब के इस सपने को जी रहा है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने खड़े होकर कहते हैं ना कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा है, तो वो हम पर, आपकी काबिलियत पर भरोसा कर रहे होते हैं। आज सरकार की नीतियाँ, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो या माय भारत पोर्टल, सिर्फ योजनाएं नहीं है, वो आपके सपनों को सच करने का जरिया है। आज का नया भारत किसी एक के भरोसे नहीं बदल रहा है, इसे हमारे देश के बेटे और बेटियां दोनों मिलकर अपने कंधों पर उठा रहे हैं। जहां सियाचिन की कपा देने वाली ठंड में देश का जवान बेटा सीमा पर खड़ा है, वहीं उसी -40 डिग्री तापमान में देश की जाबाज बेटी कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला अधिकारी बनकर तिरंगे की शान बढ़ा रही है। खेल के मैदान में अगर देखें, जब नीरज चोपड़ा का भाला हवा को चीरते हुए स्वर्ण पदक पर टिकता है तो पूरा देश झूम उठता है। वहीं झारखंड के एक छोटे से गांव से निकली सीमा कुमारी रूढ़ियों को फुटबॉल की लात मारकर आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देश का नाम रोशन कर रही है। आज देश के लड़के कोडिंग और टेक की दुनिया में सुपर पावर बन रहे, तो डायना पुंडोले जैसी बेटियां इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक फेरारी दौड़कर हवा से बातें कर रही है। चाहे वो इसरो के रॉकेट साइंटिस्ट लड़के लड़कियां हो या खेतों में आधुनिक तकनीक लाती हमारी नमो ड्रोन दीदियां, आज नया भारत अपने दोनों हाथों से इतिहास लिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उठो और शीशे में खड़े उस इंसान को देखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। फेलियर से मत डरो, गिरो तो फिर खड़े हो जाओ। तुम सिर्फ इस देश का हिस्सा नहीं हो, तुम ही देश हो। तकनीक का सही इस्तेमाल करो, अपनी सोच को पंख दो और इस देश को विकसित भारत बनाने में अपना सब कुछ झोंक दो। बस जाते जाते यही बात आपके दिल पर छोड़कर जा रहा हूँ कि माना रात अंधेरी है और सफर अभी अनजान है, पर रुकना मत मेरे दोस्त, तेरे हौसलों में ही इस भारत की जान है।
0: क्या बात कही है अब्दुल कलाम ने कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये थे हमारे युवा साथी गौरव गावशिंदे जी। साथियों, सपनों को सच करने के लिए हमें मेहनत करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी एक हेल्दी जीवन जीने के लिए पर्याप्त नींद का लेना भी है। आज की व्यस्त जीवन शैली, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण बहुत से लोगों को नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। योग एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है जो शरीर और मन को शांत करके अच्छी नींद प्राप्त करने में सहायता करता है। नियमित योग अभ्यास से तनाव, चिंता और मानसिक थकान कम होती है, जिससे मन शांत रहता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। विशेष रूप से शवासन, बालासन और प्राणायाम जैसे योगाभ्यास शरीर को आराम प्रदान करने के लिए लाभकारी होते हैं और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करते हैं।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पलक, तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसी खत में लिखा था उसने, घर वापस आ जाओ। उस एक खत ने हमको सारा शहर भुला दिया। मेरी इन चंद लाइनों से बार बार खत शब्द आने पर आप सभी ये तो समझ ही गए होंगे कि आज है बुधवार और आज का हमारा क्रम होता है यूथ चॉइस। तो क्रम शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रानी दुर्गावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है।

इसलिए स्वस्थ और गहरी नींद के लिए दैनिक जीवन में योग को शामिल करना लाभदायक है। योग निद्रा, थके शरीर और मन को विश्राम और चेतना दोनों प्रदान करते हैं और यही काम आपकी पसंद का गीत भी करता है। साथियों, आप सभी तो जानते ही हैं कि आज का हमारा क्रम है यूथ चॉइस। इस क्रम को शुरू करने से पहले मुझे आशुतोष राणा की लिखी चंद पंक्तियां याद आ रही है जो मैं आपको भी सुनाना चाहूंगी। आशुतोष राणा इस कविता में प्रेम की गहराई को बड़े ही अनूठे तरीके से बयां करते हुए लिखते हैं कि एक कागज पर प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा। ध्यान से सुनिएगा। प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। और लिखा बीच में क्या है ये तुमको पढ़ना है, और लिखा बीच में क्या है ये तुमको पढ़ना है, कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार है, जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार है, झुके नयन मौन अधर कोरा कागज अर्थ सभी का प्यार है। इस कविता में खामोशी और खाली पन्नों में भी प्यार का अर्थ निकलता है। तो साथियों, चलिए देखते हैं हमारे श्रोताओं के भेजे गए पत्र और ईमेल्स में हमें कितना प्यार मिला है। हमारा आज का पहला पत्र भेजा है गांव रतनपुर जिला खरगोन से भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन नायक ने। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप, अनिल, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, शिवानी, मीनूराज ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी ने। नागचुन रोड संजय कॉलोनी से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे ने। तो आइए आपको सुनाते हैं फिल्म ये जवानी है दीवानी से बनी दयाल का गाया ये गीत।

अगला ईमेल हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता संजय मार्कंडे ने, ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश राधेश्याम वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने, साथ ही उखल्लू यशवंत गोपाल नागनपुरे रविशंकर ने, नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिंदे शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे ने, खंडवा से श्यामाबाई रायकवार ने, रिंग रोड नर्मदानगर से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना ने, ग्राम खेगांव से प्रेमलाल निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई ने, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार साक्षी ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल ने। तो आइए आपको सुनाते हैं जब वी मेट फिल्म से सोनू निगम और जावेद अली का गाया ये गीत।

अगला ईमेल हमें भेजा है खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, हलीमा जिक्रा, आयशा खत्री ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने, जिला खरगोन, सनावत से अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश वर्मा ने, साथ ही शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप ने, गांव नथना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगला और राजेंद्र शाह ने। तो आइए आपको सुनाते हैं थ्री इडियट फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत।

अगला ईमेल हमें भेजा है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, गुजरात गांधीनगर से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने। तो आइए आपको सुनाते हैं ये गीत।

साथियों, ये तो था हमारा आज का क्रम यूथ चॉइस। आपको कैसा लगा पत्रों और ईमेल्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं प्रारंभ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न था, रानी दुर्गावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, रानी दुर्गावती बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। चलिए साथियों, अब आपकी रेडियो दोस्त पलक को दे इजाजत कार्यक्रम को समाप्त करने की।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी खंडवा है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लोफर का गीत हम सुन रहे थे श्रोताओं। और चूंकि तपते निमाड़ और कहना चाहिए चुलस्ते पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कहीं न कहीं कुछ राहत की बारिश ज़रूर हुई है, और बारिश के साथ ही ऐसे गीत भी निकल आए हैं जिनमें कहीं न कहीं बारिश का जिक्र है या बारिश से बने खूबसूरत मौसम की बात होती है। तो ऐसे ही पहले दो गाने जुड़े हुए हैं, हंसते जख्म का गीत आपको सुन पाते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना है, और लता जी की गुनगुनाहट भी आप सुनेंगे।

0: FM बैंड 101.2 MHz पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
1: तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला।
0: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से अब आपको नीरज का एक गीत सुनवाते हैं श्रोताओं। सचिन देव बर्मन का संगीत पथ ये गीत आप सुनेंगे लता जी और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म शर्मीली।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7 बजे हैं, आइए दिल्ली से सुने हिंदी समाचार।
1: आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के

0: बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से FM 101.2 MHz पर।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: एहसास की जो जुबान बन गए
5: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास उफ की दूर होने नहीं देता।
4: आप हमारी जान बन गए
5: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब

0: मतलब
1: हैं? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
4: हम बने हैं साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा की। ट्यून कीजिए एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ या डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और आकाशवाणी खंडवा। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर
1: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, ये आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुआ विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक के आसार। आज शाम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण

0: विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने आज बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों दलों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का मुख्य नारा रुके, सोचे और फिर क्लिक करें रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने साइबर जागरूकता बुकलेट और वीडियो का विमोचन भी किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सतर्कता का संदेश फैलाने के लिए साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1: आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग 55 जिलों में 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलेगा। साइबर का खतरा, ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता है। और आजकल डिजिटल ठगी के भी रास्ते कितने आ गए, डीप फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन सबका एक ही उत्तर है, सावधान ही सुरक्षा है और ये जानकर ही बचाओ।
0: ये प्रदेशव्यापी साइबर जनजागरूकता 15 दिवसीय अभियान 8 जुलाई तक चलेगा। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार इसका प्राथमिक उद्देश्य है, जिसके तहत आम जनता, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी व ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित की जाएगी। समिट में 3 विशेष सत्र होंगे। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल होंगे। उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने आज बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस समिट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा MSME, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार लाभार्थियों को चेक भी प्रदान करेंगे। इस समिट में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र तथा परिधान, अभियांत्रिकी क्षेत्रों के लिए MSME के लिए बायर सेलर्स मीट का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव MSME प्रदर्शनी व ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में लगभग 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: आज ये 15
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के नरई नाला में उनकी समाधि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे। इससे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजधानी भोपाल में लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी, जिन्होंने संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोक भवन में जनजातीय विकास कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के मानक मापदंड निर्धारित किए जाएं। राज्यपाल पटेल ने प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन अभियान की तीव्र गति से क्रियान्वयन पर हर्ष व्यक्त किया। बैठक में राज्यपाल को PM जनमन योजना के अंतर्गत 9 विभागों की 11 अधोसंरचनात्मक, 7 हितग्राही मूलक योजनाओं और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की 25 योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी गई। प्रदेश को

विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ राजधानी भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश विषय पर उच्च स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पारंपरिक रूप से किया। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने भी अपनी दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम अचानक बादल घिरने के साथ ही तेज बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सुमिरे नाकाडे और मियू ताकाहाशी से होगा। वहीं हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी निगम कार्यालय में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 30 जून तक विशेष लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में 28 जून से 30 जून तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। खंडवा के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों में कल से 30 जून तक रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। झाबुआ के शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में 1 जुलाई को जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। नीमच के शासकीय आईटीआई रामपुरा में आज जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवा संगम रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक की एसीबी शाखा सीहोर ने एसबीआई स्मार्ट एग्री कस्टमर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें करीब 75 प्रगतिशील किसान और कृषि उद्यमी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में हुआ विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक के आसार। आज शाम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण। प्रस्तुत है खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत छे। आज कार्यक्रम में आपका साथ छे आपकी बहन मनीषा चौबे। तो आप सबको हमारी राम राम। भाई बहनों, बारिश को मौसम हर किसी का अच्छा लगा छे, केका नहीं अच्छा लगतो, क्योंकि ये मानसून की बोसा बोछार को मजो अलग हो, न इना मौसम में चाय न भजिया पकौड़ा खाणू न भीगणू न अरुख घूमणू।

होता ज अच्छो लगे। पर आप ये भी जानो कि मानसून कई तरह की संक्रमण बीमारी मौसमी सर्दी नरु फ्लू जैसे आप मौसम यो मौसम है सूरज क्योंकि मानसून में अगर हमने बेपरवाही करी न स्वास्थ्य पर एको जल्दी असर हो तो विशेष सावधानी न रखा तो हम हमारा स्वास्थ्य पे इना मौसम को असर नहीं होएगा क्योंकि हमका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इना मौसम में हम गीला हो जावान तो पानी बहुत कम पीवान पर मानसून में पानी पीने से बचने से कई होज कि मतलब डिहाइड्रेशन भाई पेट में जलन पानी की कमी होने से हम अनियमित ब्लड प्रेशर बढ़ी सकज शरीर में एनर्जी नहीं रहती है ब्लड सर्कुलेशन को कारण वो बनी सकज तो बारिश का मौसम में भी पानी खूब पीवा मतलब प्यास नहीं लगती हम गीला हो जावें तो हमको लगे कि पानी की जरूरत नहीं है पर पानी हर पल हर समय हर मौसम में पीता रहवा न हरी सब्जी भाजी भी जरा देखी का न खावा क्योंकि पत्तेदार सब्जी को मानसून में खाने से बचना चाहिए क्योंकि ना मानसून का दौरान जो हरी पत्तेदार सब्जी न रहे ओका अंदर कीड़ा मकोड़ा अपना आसानी से घर बना ले जैसे कि पत्ता गोभी फूल गोभी नरू ब्राकली जैसी ऐसी हरी सब्जी न एक काम कीड़ा मकोड़ा इस तरह अंदर घुसी जाए कि वो दिखाता भी नहीं है एक लेन आप इन्हें सब्जी न का खावा भी तो पकाने से पहले नमक वाला गर्म पानी में डाला न फिर उनको उबाला न फिर ओका बाद ओका अपन उपयोग में लेवा मतलब सब्जी भाजी ना खाना को नहीं नहीं है लेकिन देखी करना क्योंकि हरी सब्जी भाजी में हरा कीड़ा रहे बारीक बारीक वो हमको देखाता नहीं है न इना मौसम में गीला हो जावा तो शरीर में सो लगे कि नहीं अब तो ठंडा मौसम में आ गया घर में सो आराम से भजिया पूरी खाओ और आनंद मनाओ लेकिन असो नहीं है हम व्यायाम भी नियमित करा घर में न कहीं भी व्यायाम करने से बचा नहीं क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करज बारिश का मौसम में बहुत अधिक भारी व्यायाम करने से बचा मतलब दौड़नो साइकिलिंग करनो असो नहीं करा क्योंकि ये पित्त बढ़ावज न रोज हम जो नियमित व्यायाम कर रहा वो करता रहा न सबसे बड़ी चीज कि खुला में जैसे कि अभी मौसम ये छे कि बारिश में हर जगह मक्खी मच्छर जहाँ पानी रुखेल रहे वहाँ तो खुज जाए तो सड़क पर जो हम नाश्तो पानी की चीज़ न छे खुली हुई चीज़ न छे ओका से थोड़ो परहेज रखा वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करा कि हम घर को बनेल खानों खावा क्योंकि खुली चीज़ न को उपयोग करने से इना मौसम में हमारा स्वास्थ्य पर असर हो सकज न बारिश की बूंद से गर्मी से तो राहत मिलज पर मानसून हमको कई छोटी छोटी परेशानी भी साथ में लावज जैसे कि गर्मी में दूषित पानी की वजह से डायरिया न पेट संबंधित गड़बड़ी भी हो सकज साथ ही बरसात में भरेल पानी घर में पहुँचने वाला दूषित पानी और मच्छर को तेजी से बढ़ाना में ये सब हमारी सेहत से जुड़ेल रहे क्योंकि जहाँ आसपास गड्ढा छे तो वहाँ भी वो पानी का हम खाली करता रहा या जो कच्चो तेल रह वो तेल थोड़ो सो जेका हम गासलेट कमाज कच्चो तेल का आसपास डाल देवा ओका से कीड़ा मकोड़ा नहीं होएगा नहीं ना पानी से अगर गीला हो जावा तो घर आकर तुरंत कपड़ा जरूर बदला क्योंकि त्वचा संबंधी रोग भी इना मौसम में हो तो एका से हम बचा न ये सबसे मजबूती मतलब यो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बनेल रहे ओकालेन भोजन का साथ सलाद को उपयोग भी अधिक से अधिक करा सलाद का सेवन से हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करेगा ककड़ी टमाटर मूली गाजर प्याज चुकंदर ये सब को भोजन में शामिल रखा न भाई बहन होना हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखा ओका लेन अच्छो खानो खावा सादो पानी के बजाय तुलसी का पत्ता उबाले का न पानी पीवा तुलसी का पत्ता में रोग प्रतिरोधक जीवाणु मतलब अच्छी वो के वो रह कि वो हर ओका में हमारा बैक्टीरिया का खत्म करज न हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बनाए रखना न ओका मजबूत बनाए कर रखज यानी पानी का हमेशा उबाली का न ये दिन न हम पीवा न तुलसी की पत्ती डालेगा ना उनाज पानी से नहावा भी तो हमारा स्वास्थ्य कल्याण बहुत अच्छो रहेगा अब चलान मनोरंजन कल्याण न सुने लेवान यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायोज बलिराम आसाराम यदुवंशी नारू साथी नना।

भविनहोड़, अभी आप सुनी रहा था यो निमाड़ी लोकगीत जिका गाया थो बलिराम आसाराम यदुवंशी नरु साथी नन। अब कार्यक्रम आपसे पूछी लेवान कार्यक्रम संबंधी सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारो प्रश्न छे कि सोयाबीन बुआई की रेज्ड बेड तकनीक कई छे। प्रश्न एक बार और सुनी लियो कि सोयाबीन फसल की बुआई की रेज्ड बेड तकनीक कई छे। इना प्रश्न को उत्तर हम कार्यक्रम का अंत में जरूर देवांगा। तब तक आप कार्यक्रम का साथ बनेल रहो। भाई बहनों, जैविक खेती को बहुत महत्व छे क्योंकि इनी खेती में रासायनिक उर्वरक, वृद्धि नियंत्रक, रसायन न कीटनाशिनक को उपयोग बिल्कुल नहीं करा। ओकी जगह जैविक उर्वरक नारु फसल अवशेष न पशुन से बनने वाली खाद जैसा कि गोबर की खाद, केचुआ की खाद न हरी खाद, केचुआ खाद का वर्मी कंपोस्ट भी कहे। फिर बनहोन जैविक पद्धति सी तैयार कीटनाशक सी कीट नियंत्रण पर जोर दियो जाए। एकासी खाली भूमि की उर्वरता लंबा समय तक नहीं बने रहे, साथ हज पर्यावरण का प्रदूषण से भी बचायो जा सकज न पारिस्थितिकी संतुलन बने रहे। हमारा देश का साथ साथ पूरा दुनिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ने का कारण खाद्यान्न की कमी को पूरो करने का लेन, हमारा मानव द्वारा कृषि में अधिक उत्पादन लेने का लेन कई प्रकार का कृत्रिम रासायनिक उर्वरक यानी खाद न जहरीला कीटनाशक को प्रयोग अधिक मात्रा में हम करी रहा था। एका कारण भूमि की उर्वरता न उर्वरक शक्ति कम होती जा रही थी। एको असर मानव का स्वास्थ्य पर भी पड़ी रो थो। एकासी वातावरण में प्रदूषण भी हुई रो थो। ने इस सभी समस्या को निराकरण खाली जैविक खेती का अपने करना करी सकान। आज से कई साल पहले जब हमारा देश में रासायनिक उर्वरक कीटनाशक को उपयोग नहीं होतो थो तो उना समय गोबर की खाद, पशु नको मलमूत्र एकोज उपयोग करता था। भाई बहन होन जैकासी कही थो कि जल, वायु, भूमि नारु पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता था। पहला मनुष्य भी स्वस्थ रहतो थो न अब रासायनिक उर्वरक से उगेल अनाज का खाई का न मनुष्य अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता खोतो जाइरो। इना समय में रसायन की सहायता से उगाई गई बेमौसम की फल, सब्जी न अनाज अनाज ये सब तो हमको मिली ज रहे छे, पर मानव जाति संतुष्ट तो होए ओका लेन ई पतन ओका योन्य मालूम है कि उनको जीवन धीरे धीरे घातक सिद्ध होतो जरूर। क्यों? क्योंकि हम रासायनिक दवाई न को सबसे ज्यादा उपयोग करी रहा है। न मनुष्य ई सभी समस्या का हल करनो चाह तो जैविक पदार्थ से उगाई गई अनाज, फल, सब्जी ये सब को हम सेवन हमको करनो पड़ेगा। ने ई सब की प्राप्ति का लेन हमको जैविक खेती का अपनावनो होएगा, उनकी उपयोगिता का समझनो होएगा, न ओको जैविक खेती का बढ़ावो भी देनो होएगा। जब हम जाना कि एक गांव का किसान को मुख्य आधार कृषि छे बेबनहोन, तो आज का समय में किसान कम सी कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करनो चाहज। एनी चाहत में वो भूली रहो कि मिट्टी में अधिक उर्वरक को प्रयोग असोच चलतो रहो तो आगे आने वाला समय में हमारी भूमि बंजर हो जाएगा न भूमि की उर्वरता घटती जाएगा। एकालेन हम अभी सी इनी चीज का समझा न जैविक खेती करनो शुरू करा, क्योंकि जैविक खेती से कई प्रकार का लाभ न की प्राप्ति हो। हमारा देश में हमारा शासन भी जैविक खेती का बढ़ावा देने का लेन सबक जागरूक भी करी रहो न। भाई बहन होन जैविक खेती से हमको बहुत तरह का लाभ भी छे। यानी जैविक खेती से जमीन की उत्पादन क्षमता बढ़ज न किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है, बल्कि उत्पादन क्षमता में सुधार हो। साथ जमीन की उर्वरा शक्ति लंबा समय तक बनेल रह। खेती में भी लागत कम आवज न गोबर की खाद, हरी खाद, केचुआ की खाद

काम फास्फोरस का ये है कि पौधों की जड़ों का विकास करना। फास्फोरस के साथ जो है समस्या ये है कि फास्फोरस उपलब्ध तो रहता है ज़मीन में, लेकिन पौधे जो है उसको ले नहीं पाते हैं, तो उसकी उपलब्धता कम होने लगती है। इसके लिए आवश्यक ये होता है कि हमको इसका जो सही तरीके से उपयोग और सही टाइम पर उपयोग करना चाहिए। तो ज़्यादातर फसलों में हम बुआई के समय इसका उपयोग करें, और जो है साथ साथ PSB कल्चर यानी कि जो जीवाणु होते हैं फास्फोरस गोलक जीवाणु, उनका भी उपयोग साथ साथ करें, जिससे कि इसकी उपलब्धता जो है सुनिश्चित हो सके। सुपरफास्फेट में भी जो है फास्फोरस पाया जाता है 16%, तो सिंगल सुपरफास्फेट का भी उपयोग, लेकिन सिंगल सुपरफास्फेट एक लो एनालाइजिंग फर्टिलाइजर होने की वजह से इसकी उपलब्धता जो है थोड़ी सी जो है स्लो होती है, तो उसका उपयोग जो है हम टाइम से जो है कर दें और उसके बाद ज़मीन में इसको मिला दें, और उसके बाद में भी हम PSB कल्चर का उपयोग करते हैं, तो फास्फोरस ये SSP का उपयोग जो है भी फायदेमंद होता है। उसमें चूंकि सल्फर भी होता है 11%, इसलिए SSP का उपयोग भी लाभदायक है, लेकिन जो है ज़्यादातर किसान भाई हमारे जो है DAP का उपयोग करते हैं। DAP में 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होती है, तो इसका डाइमोनियम फास्फेट, तो इसका उपयोग जो है शुरुआत में जो है करते हैं हम लोग किसान भाई, और इसको ज़मीन में मिला देना चाहिए, है ना, या फिर जो है जो सीड कम फर्टिलिटी होती है उसमें उससे उपयोग करें, जिससे कि जड़ क्षेत्र में जो बीज रहता है उसके 5 सेंटीमीटर नीचे इसका जो है उपयोग हो, जिससे कि जब जड़ बढ़ती है तो उसका आसानी से पौधे ले सकें। पोटास का मुख्य काम जो है दाने की चमक और दाने का साइज बढ़ाने के लिए, और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित करने के लिए पौधों में उपयोग होता है। इसमें जो है हार्डनेस आती है प्लांट में, और जिसकी वजह से जो है पोटास एक महत्वपूर्ण जो है अवयव है। पोटास में दिक्कत ये होती है पोटास के साथ कि पोटास चूँकि हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वर्टी सोल यानी काली मिट्टी है, तो पोटास पहले से ही मिट्टी में अच्छा है, लेकिन फिर भी टेस्ट के हिसाब से मिट्टी परीक्षण करवा लें, और अगर पोटास की कमी होती है तो हमें नहीं भी कमी होती है तब भी हमें जो डोज रिकमेंडेड डोज है जो अनुशंसित मात्रा है उसका उपयोग जो है करना चाहिए। और पोटास के भी जो है हमने अभी बाज़ार में पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आ गए हैं, उसका भी कल्चर का भी उपयोग करें, जिससे पोटास पौधों को मिलती रहे। पोटास के कमी के जो लक्षण होते हैं वो उसमें पौधों में ये देखा गया है कि किनारे किनारे की पत्तियां जो है सूखने लगती हैं, बीच में जो है ठीक रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी पत्ती जो है सूख जाती है, और जो है उसका उत्पादन पर प्रभाव होता है। और दूसरी बात यह है कि इससे पोटास का उपयोग करने से फसलों की, जैसे कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको लंबे समय तक रखना है, जैसे प्याज है, प्याज को हमको लंबे समय तक रखना होता है, तो इसके लिए अगर पोटास हमने भरपूर मात्रा में दिया है तो हमारी जो है कीपिंग क्वालिटी जिसको कहते हैं कि लंबे समय तक पोटास जो है खराब नहीं, प्याज खराब नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है पोटास का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पोटास का भी जो है सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। म्यूरेट ऑफ पोटास जिसमें 60% पोटास होता है उसका उपयोग जो है करते हैं। पोटास चूँकि घुलनशील भी है ज़मीन में, मिट्टी में आसानी से पानी के साथ घुल जाता है, तो उसका बाद में भी उपयोग कर सकते हैं और साथ में पानी दे दें। सल्फर की कमी जो है, सल्फर की कमी के लक्षण जो है बिल्कुल नाइट्रोजन की कमी से लक्षण से मिलते जुलते होते हैं। उसमें भी पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, इसमें भी पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि नाइट्रोजन की कमी से जो पत्तियाँ पीली पड़ती हैं वो नीचे की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं यानी पुरानी पत्तियाँ, लेकिन सल्फर की कमी से पौधे की जो ऊपर वाली पत्तियाँ हैं वो पहले पीले पड़ना चालू होती हैं, और धीरे धीरे पौधा जो है पूरा सूख जाता है। और बाकी जो है सल्फर और नाइट्रोजन की कमी को पहचानना जो है बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी तत्व की कमी है, तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो है मिट्टी का परीक्षण करवा लें, उसके बाद पता चल जाता है कि हमें सल्फर की कमी है, उसकी हम उसी तरीके से पूर्ति करें। सल्फर के लिए हमारे जो आजकल बेंटोनाइट सल्फर है उसका उपयोग कर सकते हैं आप। WDG वाटर सोलविल 90% वाटर सोलविल आ गया है, उसका उपयोग कर सकते हैं 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करते हैं। साथ साथ में सिंगल सुपरफास्फेट जैसा आपने बात की थी उसमें भी 11% सल्फर होता है, तो आप उसकी भी मात्रा जो है, जैसे सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में लगभग 3 बैग यानी 1.5 क्विंटल जो है सिंगल सुपरफास्फेट बोने से पहले मिला देते हैं, तो सल्फर की आपूर्ति हो जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जो आते हैं मुख्य रूप से जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, इस तरीके के पोषक तत्व जो हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जो है जिंक की बात करते हैं हम, तो जिंक जो है हमारे यहाँ लगभग जो है 40% मिट्टियों में जिंक की कमी पाई गई है, तो इसमें खासतौर से ये जो ये सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे इसमें जो

0: फसलें उनमें जो है जिंक की कमी पाई जाती है। तो जिंक की कमी के लिए जिंक सल्फेट आसानी से बाजार में उपलब्ध है, 33% का आता है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको छिड़क सकते हैं। साथ साथ जो है चिलेटेड जिंक भी बाजार में उपलब्ध है, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो जिंक की कमी से क्या है, स्पॉट पड़ जाते हैं, खासतौर से आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियों में बीच बीच में धब्बे पड़ जाते हैं, ब्रोनियन टैंकी हो जाती है, तो उससे जो है आप पहचान सकते हैं आसानी से कि इसमें जिंक की कमी है। तो आप जो है फोलियो एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और साथ साथ अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जो है ज़मीन में भी इसका उपयोग पहले से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए जिंक की कमी में, खास तौर से कि अगर जिंक की कमी नहीं है मिट्टी में तो अनावश्यक रूप से जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जिंक आपने डाल दिया पहले से जिंक पर्याप्त है तो फास्फोरस की उपलब्धता भी वो कम हो जाती है, क्योंकि जिंक फास्फेट बना लेता है। आयरन की कमी ऐसा मिट्टी में नहीं है, लेकिन ये आयरन की कमी जो है तब लक्षण प्रकट होते हैं जब जो है बरसात जो है थोड़ी सी या पानी की जो है थोड़ी सी कमी हो जाती है जमीन में, तो क्या होता है कि आयरन की उपलब्धता कम होने लगती है। मिट्टी में तो पर्याप्त है, मिट्टी में कहीं भी हमने जो है पिछले कई सालों के बोरान जो है एक्चुअली में ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए, तो इसका लिए बोरान के लिए बोवैक्स आता है तो उसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन वो पहचानना बहुत आवश्यक है कि बोरान की कमी है कि नहीं है। क्यों, माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ समस्या ये है कि जब तक हम ये पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम कैसे डाल पाएंगे। तो इसके लिए सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर ये कैश क्रॉप लगाते हैं जैसे गोभी है, टमाटर है, मिर्ची है, तो कम से कम जो है एक मिट्टी का परीक्षण एक निश्चित रूप से करवा लें। मिट्टी परीक्षण उसमें आजकल तो ये हो गया है कि मिट्टी परीक्षण बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट के होता ही नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यक है उसमें, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जाँच आवश्यक है, तो इसलिए और निःशुल्क होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मिट्टी का सैंपल ले आएँ और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में इसको देखें और समय से उसको टेस्ट करवा लें, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमको ये पोषक तत्व देना है। तो 3 साल तक उपयोग करें, जैसे आपकी मिट्टी में अगर मान लो जिंक की कमी है तो एकदम से दूर नहीं होगी, लगातार जो है 2-3 साल तक इसका इस्तेमाल करें, और जो है निश्चित रूप से जो है उसका कमी जब तक दूर ना हो जाए तब तक आप उसका प्रयास करते रहें। और जो जैसे सब्जियों वाले में बात करते हैं, सब्जियों में मॉलिब्डेनम, बोरॉन, इन पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इस पर नज़र गड़ाई रखें। अगर इन तत्वों की कमी होती है तो निश्चित रूप से उनका उपयोग, मॉलिब्डेनम के लिए भी मॉलिब्डेनम आता है, उसके बाद में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा आप सावधानी के साथ करना है, बस ये ध्यान रखना है कि। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी ये सुन रहा था आप पोषक तत्व प्रबंधन का बारे में जानकारी दे रहा था डॉक्टर वाई के शुक्ला। आ सुना एक और निमारी लोकगीत जेका गायोज कांता जोशी नरो साथी नने।

फेवरेट। अभी आप सुनी रहा था यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायो तो कांता जोशी ने। अब आपका आज का कृषि समाचार बताई देवन। तो भाई बहनों, सोयाबीन उड़द मक्का न खरीफ फसल की बुआई पर्याप्त नमी हो तबच कर जो। प्रदेश में कई क्षेत्र में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो चुकी है। जब तक क्षेत्र में 2 से 3 बार बारिश नहीं हो जाए तब तक खरीफ फसल की बुआई नहीं करा। 100 मिलीमीटर बारिश होने पर बुआई पर्याप्त नमी में करा। न उन्नत उत्पादन तकनीक से करा। जलवायु क्षेत्र का लेन अनुकूल सोयाबीन की किस्म को चयन करा। अंकुरण परीक्षण का माध्यम से सोयाबीन की बोनी का लेन उपलब्ध बीज का न्यूनतम 70% अंकुरण सुनिश्चित होने पर बुआई करा। न उर्वरक प्रबंधन में पोषण प्रबंधन का लेन अंतिम बखरनी से पहले गोबर की खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टर या मुर्गी की खाद 2 से 5 टन प्रति हेक्टर का खेत में फैलावा न फिर अच्छे

पूरी तरह से उसका फैलाई करना डाला न कार्बनिक खाद का अतिरिक्त सोयाबीन फसल का लेन आवश्यक पोषक तत्व 20:60:40:20 किलोग्राम प्रति हेक्टर यानी NPK सल्फर की पूर्ति खाली बोनी का समय करा जेका लेन ये बात को विशेष ध्यान रखा। ये तो था आज का कृषि समाचार। अब आपका खंडवा उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव की जानकारी दे देवाई। तो आज सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहो 3,000 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 7,025 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 2,291 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 2,510 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 4,980 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 5,884 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहो 1,900 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 2,100 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहो 4,201 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 6,651 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहो 5,000

कृषि समाचार। अब आपका खंडवा उपज मंडी से प्राप्त उपज नका भाव की जानकारी दे देवाई। तो आज सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहो 3,000 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 7,025 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 2,291 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम 2,510 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 4,980 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम 5,884 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहो 1,900 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 2,100 रुपये प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहो 4,201 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम 6,651 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहो 5,000 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम 7,451 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना को न्यूनतम भाव रहो 5,450 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम 6,501 रुपये प्रति क्विंटल। न सरसों को न्यूनतम न अधिकतम भाव एकज रहो। अब आपका मौसम की जानकारी दे ध्यान। तो आज सूर्योदय हुए प्रातः 5:41 पर, न सूर्यास्त हुए शाम 7:09 पर। न आज का दिन को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। अब कार्यक्रम को समय पूरा हुई रोज। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न पूछो थो कि रेज्ड बेड तकनीक कई आए सोयाबीन की बुआई की। तो रेज्ड बेड प्लांटर द्वारा जमीन से उठी हुई 2 क्यारी न 3 नाली न को निर्माण हो। क्यारी की सतह से नाली का तल से 6 से 10 इंच गहरो रज। 1 क्यारी में सोयाबीन की 2 कतार की बुआई हो न ऊंची क्यारी होने का कारण अधिक वर्षा या जल भराव से फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। न नाली गहरी होने से जल की सुरक्षित निकासी भी हुई जाए। अब कार्यक्रम में समय का साथ प्रश्न का उत्तर का साथ। अब आज्ञा देव आपकी बहन मनीषा चौबे का राम राम।

0: श्रोताओ, आपने सुना खेती गृहस्थी कार्यक्रम एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी खंडवा। आइए अब सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी वो कैसी होगी, लेखिका सुधा जौहरी, प्रस्तुतकर्ता एच एस व्यास।

0: मुझे
1: हाँ हाँ बेटा।
0: और सड़क पर चलो ना अम्मा, तो दाएं बाएं देख के चला करो। हाँ
1: अरे वो तो मैं बड़ी होशियारी से चलती हूँ हमेशा। वो तो क्या है ना, आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा बोलती जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि पवन सुत ने बचा लिया।
0: वैसे कौन हो अम्मा, कहाँ रहती हो?
1: अरे बेटा मैं कौन, छोटी थी तो सब शंभू की छोकरी कहते थे, बड़ी हुई तो राम नारायण की बहू, फिर शंकर की अम्मा और अब सोनू की दादी।
0: फिर भी माँ बाप ने कोई तो नाम रखा होगा ना अम्मा, है?
1: हाँ बेटा रखा था नाम शारदा। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
0: मेरा नाम अंशु, अंशुमान।
1: ओ अंशु, ये तो बेटा आंसू जैसा नाम लगे। आगे क्या बोला बेटा?
0: मान, अंशुमान। सूरज को कहते हैं अम्मा।
1: ओ अब आजकल के नाम तो बेटा समझ में भी ना आवे। अब मेरा ही नाम देखो ना शारदा, नाम विद्या की देवी और पढ़ी कुल पांचवी तक। अरे बेटा सब्जी मंडी तो आ गई।
0: हाँ, आपको कहाँ उतारू अम्मा, मुझे तो यहीं सामने जाना है।
1: बस बेटा यहीं सामने उतार दे। अरे ये तो कुछ जासूस इंटरनेशनल है बेटा, तुम जासूसी करते हो?
0: नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कुछ काम है अम्मा।
1: अच्छा भगवान तेरा भला करे। अच्छा चलती हूँ।
0: क्या बुढ़िया है, वहां तो हाय हाय कर रही थी और अब क्या फुर्ती से जा रही है मटक मटक कर। खैर
2: जैन सर, ये जासूसी कंपनी खोले एक हफ्ता हो गया पर कुल दो केस आए और वे भी हमसे सुलझे नहीं।
3: यू नो मधु, हर काम में वक्त लगता है। पहले कुत्ता खोने का केस आया था, दे वर स्टूपिड पीपल। छोटा कुत्ता छत पर चढ़ गया, उतरना उसको आता नहीं था और बस उन्होंने शोर मचा दिया।
2: राइट सर, एकदम बुद्धू लोग थे।
3: और दूसरा लड़की भागने वाला, हम तो उसे ढूंढ ही लेते पर लड़की समझदार थी, ब्राइट गर्ल। पता चल गया उसको कि दोस्त गड़बड़ है, सो घर लौट आई।
2: अगेन यू आर राइट सर।
3: यू नो ये शहर बहुत बड़ा यानी मेट्रो टाइप नहीं है। यू नो जब मैं न्यूयॉर्क में था
2: सर, लाल बत्ती जली, कोई गेट पर है सर।
3: देखो देखो उस छिपी खिड़की से देखो, मैं भी देखता हूँ।
2: वो देखिए सर, स्कूटर पार्क करके एक नौजवान आ रहा है।
3: हाँ तुम बाहर के ऑफिस में जाओ क्विक, बस इसे ऐसा लगना चाहिए हम बेहद व्यस्त जासूस हैं। यू नो द यूजुअल ट्रिक्स।
2: ऑफ कोर्स सर, 5 मिनट में लेकर आती हूँ। गुड लक सर।
3: तब तक मैं ऑफिस जमा लूँ। ओहो कितनी मिट्टी है मेज पर, साफ करने का भी वक्त नहीं है। खैर देखा जाएगा। हाँ मेरी किताब है, ये मोटी वाली खोल लेता हूँ।
2: मे आई कम इन सर?
3: कम इन।
2: सर ये मिस्टर अंशुमान है।
3: हेलो आई एम जयंत, जयंत भंडारकर।
0: हेलो सर। सर आप अभी लेंस से क्या देख रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
3: आप देख रहे हैं ना मेज पर कितनी धूल है, इस पर जो भी आता है अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है। और भी बहुत कुछ है, वो हमारी सीक्रेट स्पेशल बातें हैं।
0: जी जी
3: मैं बता नहीं सकता। कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
0: वो बात ये है सर कि वो क्या हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है सर।
3: और आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं, राइट?
0: नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बात ये है सर कि मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ और उससे भी पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की है कैसी।
3: तो आप उसके घर या कॉलेज को नहीं चले जाते?
0: नहीं जा सकता ना सर।
3: क्यों?
0: क्योंकि सर वो एमए कर चुकी है और उसके घर के सब लोग मुझे पहचानते हैं। लड़के लड़की को एक दूसरे को दिखाने का चलन हमारे यहाँ आज भी नहीं है ना।
3: ठीक है आप हमें सिर्फ उसका पता दे दें फिर सब कुछ हम पर छोड़ दें। वो लड़की का नाम क्या है?
0: जी लड़की का नाम है शारदा। लाइए पता मैं लिख देता हूँ। सर आपकी फीस?
2: फिलहाल तो आप 500 रुपये जमा करा दें।
0: बिल्कुल ये लीजिए, ये लीजिए सर। सर आप लोग कैसे क्या करेंगे?
3: लिसन मिस्टर, मेरी सेक्रेटरी मधु उससे दोस्ती करेगी, फिर वह उसको किसी सुनसान पार्क में ले जाएगी।
0: फिर सर?
3: उधर एक गुंडा इनको छेड़ेगा।
0: सर फिर?
3: दूसरी तरफ से मैं और आप आकर उस गुंडे को पीटेंगे।
0: हाँ सर।
3: मैं उसे कॉलर पकड़ कर ले जाऊंगा और आप उससे आराम से बातें करिएगा।
0: वाह क्या बढ़िया ब्रिलियंट आइडिया सर, क्या प्लान है सर, एकदम फिल्मी अंदाज में, बाय गॉड मजा आ जाएगा सर।
3: आप जानते हैं न्यूयॉर्क में लोग मुझे क्या कहते थे?
0: क्या कहते थे सर?
3: जयंत नहीं, जायंट।

0: अरे मर गई रे, अरे कोई तो उठाओ मुझे।
1: अरे
0: अरे राम,
1: कैसे चलती हो माँ? क्या हुआ?
0: अरे मेरे बेटा उठाओ, अरे हाथ तो
1: लाओ,
0: पकड़ो
1: लाओ,
0: बेटा।
1: अरे हाथ दो ना माँ।
0: अरे अरे मार दिया।
1: अरे भगवान को दुआ दो अम्मा के हड्डी पसली नहीं टूटी, और भीड़ भाड़ की वजह से स्कूटर की स्पीड कम थी। हाँ।
0: अरे बेटा मैं तुम्हारी अपनी ही धुन में चली जा रही थी, तुम्हारे स्कूटर से ना मैंने थैला टकराया और बस फिर पैर उखड़ गए बेटा।
1: हाँ, लगी तो नहीं ना अम्मा?
0: अब बेटा बुढ़ापे का शरीर है तो गिरी तो झटका तो लगा ही ना, भीड़ को देखो कोई मेरा रुका भी नहीं। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो बेटा?
1: मैं तो यहीं पास सब्जी मंडी तक।
0: अच्छा बेटा तो चलो मुझे भी वहीं पर उतार देना, मुझे भी उधर ही जाना है, फिर मैं चली जाऊंगी।
1: अच्छा कुछ पानी वानी पियोगी अम्मा?
0: नहीं अब ठीक है बेटा, अब चले।
1: अच्छा लो बैठो पीछे।
0: हाँ,
1: अम्मा कस के पकड़ना।

0: पर्सन जायंट तो मतलब वो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम चीज को कहते हैं, और आप तो माशाल्लाह बड़े मुख्तसिर से एकदम मिनी इंसान हैं, छोटे से बिल्कुल हल्के फुल्के हैं।
1: यही तो है, कोई देखने में जायंट लगता है विशालकाय, और कोई दिमाग से जायंट होता है जैसे शर्लिक होम्स, जेम्स बॉन्ड, हरक्यूलिस
0: ये सब
1: पायरो।
0: तो सर दुनिया के मशहूर उपन्यास वाले जासूस है ना
1: हाँ,
0: सर।
1: और मैं असली जासूस हूं, जयंत द जायंट।
2: सर दूसरे ऊपर के खर्चों के लिए जैसे गुंडे को देना होगा और फिर हम लोगों का आना जाना।
1: राइट, क्या नाम है आपका?
0: जी वो क्या बोलते हैं, अंशुमन, अंशुमन
1: मिस्टर अंशुमान, 500 रुपये और जमा करा दीजिए।
0: लीजिए सर, ये लीजिए मैडम।
1: तो ठीक है अंशुमान, हम आपको संपर्क करके जगह और दिन बता देंगे।
0: ठीक है सर, मैं चलता हूं। सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज। अच्छा सर मैं चलता हूं, बाय सर।
2: सर गया, हमें 1,000 रुपए दे गया।
1: पैसे लेने वाले गुर तो तुम्हें याद है ना मधु?
2: यस सर, पहले 500 रुपए बोलो, अगर उसकी चेहरे पर कोई रेखा ना उभरे तो किसी बहाने 500 और मांगो, और फिर कोई रिएक्शन ना हो तो 500 और।
1: खैर, अब तुम बताओ, उस लड़की शारदा से दोस्ती कैसे करोगी?
2: वो तो मैं कर लूंगी, पर गुंडे का इंतजाम वो मुझसे नहीं होगा।
1: अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, मेरा भाई है ना, वो मेरी बुआ जी का लड़का, वो तो लड़की छेड़ने की बात सुनते ही फौरन मान जाएगा।
2: आप चंद्र जी की बात कर रहे हैं? वो तो इतने हैंडसम हैं, गुंडे कैसे लगेंगे सर, और फिर वो तो जेंटलमैन लगते हैं।
1: मेकअप माय डियर, मेकअप तुम बस देखे जाओ।
2: पता तो यही लगता है, वो पीला वाला घर है। चलो घंटी बजाते हैं। चल मधु, ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना।
3: जी कहिए, क्या काम है आपको?
2: मैडम मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ इस क्षेत्र की महिलाओं का, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ?
3: हाँ, आइए बैठिए, आप पूछिए जो भी पूछना है आपको।
2: आपका नाम?
3: टाइप किया हुआ फॉर्म है ना आपके पास, लाइए मैं खुद ही भर देती हूँ। वैसे मेरा नाम शारदा है, आप?
2: मधु, मैं मधु हूँ।
3: इस सर्वे से क्या होगा मधु जी?
2: पता चलेगा ना किस उम्र यानी एज ग्रुप की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं।
3: अच्छा ये लीजिए, भर गया आपका फॉर्म।
2: ओ तो आपने एमए किया है, आजकल क्या कर रही हैं आप?
3: अभी तो कुछ नहीं मधु जी, सिर्फ बोर हो रही हूँ।
2: शारदा जी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बने आपके? यानी आजकल तो चलन है, फैशन है।
3: अरे नहीं मधु जी, हमारी तो परवरिश, हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही हैं। पर ये बताइए, आपका है कोई खास?
2: अरे कहाँ, ना किसी ने सीटी बजाई, ना कभी किसी हैंडसम यंग मैन से टक्कर हुई, पर हाँ मन जरूर करता है कि कोई स्पेशल मिले।
3: जरूर मिलेगा मधु जी, ऊपर वाला सबका जोड़ीदार बनाता है। वैसे आप रहती कहाँ हैं?
2: शारदा जी बस यहीं पास ही, तुम शाम को बोर होती हो तो घूमने क्यों नहीं आती?
3: अब अकेले कहाँ जाऊं मधु?
2: मैं भी अकेली हूँ, ऐसा करें कल शाम पार्क चलें, पर जरा सुनसान है।
3: अरे अच्छा है मधु, भीड़ भाड़ से वैसे भी जी घबराता है, मुझे तो सुनसान जगह ज्यादा पसंद है। चलो एक दोस्त तो मिली आप जैसी।
2: तो कल शाम 6 बजे?
3: हाँ ठीक है मधु, कल साथ चलते हैं। ऑल राइट, ओके मधु, बाय
2: ओके बाय,
3: बाय।
2: ओके ओके।
4: चंदर, ये चंदर, वो देखो, वो आ रही है मधु और शारदा।
0: हाँ
4: जयंत भैया, आप देखिए आपकी मधु कितनी अच्छी लग रही है।

0: वो देख वो देख उधर, वो वहां अंशु भी छिपा बैठा है। अरे वो पास आ गई है, जा।
1: सच मधु, कितनी ताजगी है हवा में, जी चाहता है इसे बाहों में समेट लें।
2: पर सन्नाटा कितना है, पता नहीं लोग यहाँ क्यों नहीं आते। शारदा देखो, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है।
1: आने दो, होगा पार्क में कोई।
2: शारदा अजीब सा आदमी है।
1: अरे कुछ नहीं करेगा, आराम से चलो। ओ देखो मिस्टर, यह बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर, उधर जाकर टहलो, जो तुम्हारी कोहनी जो है ना लड़कियों को ना लगे।
3: कोहनी जरा तिरछी हो गई, आपकी ये चुन्नी भी कितनी खूबसूरत है, इसे छू लूं?
1: आपकी टोपी, बनियान, रुमाल और लूंगी भी बहुत खूबसूरत है, मैं भी जरा।

0: इन्हें छूलूं? ये ले गुंडा।
1: अरे मेरी माँ।
0: अरे ये खा। अरे अब ये भी मत।
1: अरे अरे अरे अरे मेरी लूंगी, मेरी लूंगी।
2: बस शारदा, बस बस बस, अरे बस करो, लोग आ रहे हैं। बस शारदा, अरे बस करो, बस करो, लोग आ रहे हैं।
1: अरे जान भैया मर गया। जान भैया मर गया।
3: अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ?
0: तो अंशुमान,
3: तुम आप मुझे जानती हैं?
0: फोटो देखी है तो ये ड्रामा तुमने किया है?
3: मैं दरअसल तुम्हें देखना, तुमसे मिलना, बात करना चाहता था शारदा।
0: तो अब ये बेचारा तो बीच में ही पिट गया ना, अब उठाओ भाई इसे।
2: इन्हें मैं संभालती हूँ। चंदर जी अब ठीक तो है ना?
4: अरे क्या घपला हो गया, जासूसी की ऐसी की तैसी।
2: चंदर जी ज्यादा लगी क्या?
5: तुम्हारा हाथ लगते ही दर्द गायब हो गया मधु, लग रहा है गुलाब के फूलों का सहारा मिल रहा है।
2: हटिए भी,
0: तो इसलिए तुम जासूसी संस्था में गए थे?
3: हाँ वो, पर तुम्हें कैसे मालूम? ओ तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज पहचानी सी क्यों लग रही है मुझे?
0: वो लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है।
3: नहीं तुम कल तुम यूं अम्मा तुम ही थी ना? तुम ही थी ना?
0: हाँ बेटा है? मैं हूँ शंभू की छोरी शारदा।
3: तो कैसा लगा शारदा? ए शर्माने से काम नहीं चलेगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी शारदा, बस मेरी कल्पना साकार हो गई, अब तुम बताओ ना।
4: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे। अरे ये इन दोनों को क्या हुआ? लगता है कि जासूसी का धंधा बंद करना पड़ेगा, ये सेक्रेटरी तो गई काम से। मधु मधु।
2: सॉरी सर, सॉरी सर, लो चंदर जी पानी पियो।
0: क्यों मधु, हो ही गई ना हैंडसम यंग मैन से टक्कर,
2: हट।

0: वो कैसी होगी। अभी आप सुन रहे थे ये झलकी, लेखिका थी सुधा जौहरी, प्रस्तुति HS व्यास।
1: ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए गायक और संगीतकार ए आर रहमान और श्वे

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह है राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुनिए अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रावण और फिल्म का नाम है राजा।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं वाजिद खान, श्रिया घोषाल और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं कौसर मुनीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम

0: मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: We had 26 delegates from
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें

0: देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन जो ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।

0: I also refer to the unwarranted.
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: It has always been, is and will remain so.
2: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर

0: समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए। मैं सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है समाधि।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अगला गीत। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की, और फिल्म का नाम है इशारा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी। और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ। फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना पगल।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूँ। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशा।

अपनी को मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ, भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पे, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूँ सब, सब कुछ, सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे।

ना दे। मैं अब आजाद हूं, अब मैं अपने वश में हूं। हाँ, अब मैं अपने वश में हूं, किसी और के नहीं।

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

0: के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा

के हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।